मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 8, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: यह मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और हमें प्राप्त हुआ है, यह हमारा सौभाग्य है। इसकी संरचना बड़ी ही अद्भुत है, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। लेकिन इस पिंड में ब्रह्मांड का दर्शन तभी संभव है जब हम इस शरीर की क्षमताओं का सही उपयोग कर सके। 84 लाख योनियां हैं, उनमें केवल मनुष्य को ही वो ज्ञान और विवेक प्राप्त है जिसके कारण वो अपने करणीय और अकरणीय कर्मों पर विचार कर सकता है। यदि वो

0: ऐसा नहीं करता तो उसमें और दूसरे जीवों में कोई अंतर नहीं है। जितने भी दूसरे जीव हैं वो निद्रा, भय, मैथुन और आहार में लिप्त हैं। यदि मानव भी यही कर रहा है तो उसमें और दूसरे जीव में अंतर ही क्या है? दूसरे जीवों को ये अवसर तो मिला ही नहीं, ये तो केवल मनुष्य को ही शरीर के रूप में मिला है, एक साधन मिला है जिसके द्वारा वो केवल इस जन्म ही नहीं बल्कि अपने अगले जन्म को भी सुंदर बना सकता है, शांति और आनंद पा सकता है। उसे निरंतर ये ध्यान रखना है कि ये शरीर साध्य नहीं है, साधन है। लेकिन अक्सर हम भौतिकता के मकड़ जाल में उलझे हुए अपने शरीर को ही साध्य मान लेते हैं, इसकी सुंदरता के लिए खर्च करते हैं, इसे भरा रखने के लिए खर्च करते हैं, इसे जितना से ज्यादा सुख प्राप्त हो सके इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। साधन के रूप में अगर हम उपयोग करें अपने शरीर का तो ये हमें भवसागर से मुक्ति दिला सकता है। तुलसीदास जी ने कहा, शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यानी ये शरीर एक साधन है, ये एक मोक्ष का द्वार है। माँ के गर्भ से जब शिशु बाहर आता है तो अपनी बंद मुट्ठी में बहुत कुछ लेकर आता है और फिर जब बड़ा होता है, बहुत सारे सुकर्म कुकर्म करता है, अपना सब कुछ यहीं छोड़कर खुले हाथों से इस दुनिया से प्रस्थान कर जाता है। लेकिन एक वस्तु वो अपने साथ ले जाता है, वो होता है उसका संस्कार। अच्छे या बुरे संस्कार उसका प्रारब्ध बनकर अगले जन्म में उसके साथ जाते हैं। ये संसार एक बाजार है, मनुष्य तो खरीद बिक्री करने वाला एक तुच्छ प्राणी है। कुछ लोग सत्कर्मों के द्वारा लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बुरे कर्मों द्वारा इस मानव जीवन रूपी मूलधन को ही खो बैठते हैं। जिसने इस संसार रूपी बाजार में आकर भी अच्छी खरीदारी नहीं की, अर्थात सत्कर्मों के द्वारा अच्छे संस्कार नहीं बनाए, उसके लिए दूसरी हाट कहाँ है? पता नहीं ये मानव जीवन फिर मिले या ना मिले। इसीलिए कबीर और उनकी तरह जितने भी संत कवि हुए, उन सब ने संसार रूपी हाट से सत्कर्मों के द्वारा अच्छी खरीदारी करने की बात बार बार कही है। अच्छे संस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं जो इस संसार में रहते समय हमारा साथ देते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ अच्छा सिखा जाते हैं, उनके लिए कुछ भलाई का काम करते हैं। और जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो आगे की दुनिया में भी ये संस्कार हमारा साथ देते हैं, तो क्यों ना अपने संस्कारों को बेहतर बनाने की दिशा में सोचा जाए।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आज का विषय है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सविता कुमारी।
1: आज कृषि चर्चा अब सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेह किसान भाई बहन लोकन, हम सब खेती करे छी त सदैत फसलक उपजा मन अनुकूल चाहैत छी। जाय लेल माटिक स्वास्थ्य ओ एकर उर्वरा शक्ति पर ध्यान देबय पड़त। माटि जखन स्वस्थ रहत तखने लगाओल गेल फसल बेर पर ओ व्यावसायिक दृष्टि नीक होयत। एहि लेल ई आवश्यक भऽ जाइत अछि जे कोनो फसिल के लगयबासँ पहिने खेतक माटिक जाँच करा लेबाक चाही। कारण माटिक जाँच करलासँ हमरा सबके ई बुझबामे आबि जाइत अछि जे खेतक माटिमे कोन कोन पोषक तत्वक कमी अछि अथवा कोन कोन पोषक तत्वक अधिकता अछि। माटि सूक्ष्म

0: तत्व केहन स्थिति अछि, माटिक पीएच कतेक अछि, माटि केहन प्रकारक अछि इत्यादि। माटिक जाँचक महत्व के बुझैत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाओल गेल, जकर मुख्य उद्देश्य माटिक स्वास्थ्यक परीक्षण करब अछि। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंग्रेजी में सॉयल हेल्थ कार्ड सेहो कहल जाइत अछि। एहि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 19 फरवरी 2015 सँ प्रारंभ कयल गेल, जाहि अंतर्गत किसान भाई बहिन लोकनि अपन अपन खेतक माटिक जाँच करा सकैत छथि, जाहि लेल सरकार द्वारा पंजीयन करबाक प्रावधान कयल गेल अछि। ओ पंजीकृत लोकनि के एक गोट कार्ड उपलब्ध कराओल जेतन, जाहि पर माटिक प्रकार, उर्वरक अनुशंसा इत्यादि सूचना अंकित रहत। पंजीयन ऑनलाइन सेहो कराओल जा सकैत अछि, जकर पता अछि www.biharswalehealth.com। पंजीयनक लेल राजस्व गामक निवासी होबाक चाही, तखने ई सुविधा उपलब्ध भ सकतन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सँ लाभ उठेबाक लेल माटिक नमूना देल गेल दिशा निर्देशक अनुसारे एकत्र कऽ कऽ जिला स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पठेबाक चाही। एतय पठाओल गेल माटिक जाँच निःशुल्क कयल जाइत अछि। ओ 10 दिनक भीतर जोत धारक के मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराओल जाइत अछि, जाहि पर माटिक जाँचक पश्चात ब्यौरा देल जाइत रहैत अछि। ई ध्यान रहे जे माटिक नमूना के माटि जाँच प्रयोगशाला में देवाक प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कऽ लेबाक चाही। किसान भाई बहिन लोकनि जाँचक लेल माटिक नमूना सावधानीपूर्वक एकत्र करबाक चाही, जेना माटि खेतक आरि पर सँ अथवा एकर कात सँ नहि लिए, माटि पैघ कोला रहला पर 2 सँ 3 ठाम सँ लेबाक चाही। माटिक नमूना छायादार स्थान अथवा गोबरयुक्त ठाम सँ नहि लिए। एकत्र कयल गेल नमूना के साफ पॉलिथीनक झोरा में राखि कऽ ओहिमे अपन नाम, पता, फसिल लेबाक इच्छा इत्यादि ब्यौरा एकटा कागज पर पेंसिल सँ लिख कऽ राखि दिए, फेर झोराक मुँह के बान्हि कऽ माटि जाँच प्रयोगशाला में पठाबी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाक माध्यम सँ जोत धारक के माटि के सुधारबाक विधि सेहो बताओल जाइत छनि, जाहि अंतर्गत जैविक खेती के प्रोत्साहन देबाक अनुशंसा कयल जाइत अछि, बर्मी कंपोस्टक इकाई लगेबाक प्रशिक्षण देल जाइत अछि, पॉलिथीनक बर्मी बेड देल जाइत अछि, समेकित पोषक तत्व प्रबंधनक लेल प्रोत्साहित कयल जाइत अछि, जैव उर्वरक अर्थात राइजोबियम PSV आदि के प्रश्रय देबाक अनुशंसा कयल जाइत अछि, जैव कीटनाशी इकाईक ज्ञान देल जाइत अछि, फल ओ तरकारीक बाजार कचरा सँ कृषि कचरा सँ कंपोस्ट खादक उत्पादन सेहो ओकरो प्रशिक्षण देल जाइत अछि। अहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषक श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय था मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी सविता कुमारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: इंद्रप्रस्थ चैनल है, प्रातः 6 बजने को है, अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार।
4: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर

0: पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: दांतों में कनकनी के कारण दांत को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग जो मुंह के अंदर दिखाई पड़ता है उसे क्राउन कहते हैं तथा जो भाग मसूड़े के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। क्राउन वाला भाग एनामेल से ढका होता है तथा जड़ सीमेंट से ढका रहता है। एनामेल शरीर का सबसे बड़ा संरचना है। जब किसी कारण से एनामेल के संरचना में परिवर्तन आ जाता है अथवा सीमेंट अपने वास्तविक ढांचा में से परिवर्तन हो जाता है तो दांतों में कनकनी होने लगता है। इनामेल तथा

0: सीमेंटम के संरचना में परिवर्तन के कई कारण हैं। गलत तरीका से ब्रश करना, दांतों की सफाई के लिए ब्रश को अपने मसूड़ों पर 45 डिग्री कोण पर रखकर गोल गोल घुमाते हुए हल्की मालिश करना चाहिए। ब्रश नम मुलायम होना चाहिए, लेकिन इस बातों का ध्यान नहीं देने पर दांतों में घिसावट आता है तथा एक समय के बाद दांत की ऊपरी सतह इनामेल नष्ट हो जाता है। ब्रश करने के लिए समय अवधि, दांतों की सफाई करने के लिए घंटों ब्रश करना जरूरी नहीं है, इसके लिए 2 से 5 मिनट ही उपयुक्त है। अधिक समय तक ब्रश करने से दांतों में तथा मसूड़ों में घिसाव आने लगता है और ब्रश को 1 महीने में बदल देना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल करते करते ब्रश के ब्रिसल कठोर हो जाते हैं जो कि इनामेल और मसूड़ों के लिए हानिकारक हैं। दांतों की सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली पाउडर, दांतों की सफाई के लिए लाल मंजन, काला मंजन या किसी भी तरह का पाउडर दांतों के लिए हानिकारक है। इन मंजनों में बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे दांतों पर बहुत खराब असर पड़ता है। इन पाउडर को निकोटीन मिला दिया जाता है जिससे इनके लिए निर्माता विकसित जिसके लिए एडॉप्ट विकसित हो जाते हैं। बिना इसके इस्तेमाल ही संतुष्टि नहीं मिलती। इन पाउडर के नियमित इस्तेमाल से दांत एवं मसूड़ों में घिसाव आता है, इसीलिए हमेशा पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मसूड़ों की बीमारी के कारण मसूड़ों के वास्तविक ढांचा में परिवर्तन आ जाता है जिससे सीमेंटम मुंह के वातावरण में मिल जाता है और सीमेंटम के स्नायुओं का कुछ भाग होता है जिससे जब भी ठंडा या गर्म कुछ भी मुंह में आता है इससे कनकनी होने लगता है। दांतों की ऊपरी सतह घिसने के कारण खाना खाते समय गलत ढंग से ऊपर या नीचे के जबड़े का इस्तेमाल करने से दांत के ऊपरी सतह का घिसावट आने लगता है तथा कुछ समय पश्चात दांत का ऊपरी सतह जो कि एनामेल कहलाता है घिस जाता है। एनामेल के नीचे का सतह डेंटिन कहलाता है। डेंटिन में स्नायु का संचार होता है। एक बार डेंटिन मुंह के वातावरण में आ जाता है तो किसी भी प्रकार का ठंडा या गर्म खाने पर कनकनी होने लगता है। दांतों में कीटाणु या कीड़ा लगने के कारण दांतों की सड़न का असली कारण है प्लाक। प्लाक के भीतर मौजूद कीटाणु मुख्य रूप से शक्कर और भोजन में मौजूद स्टार्च पर ही पनपते और बढ़ते हैं। ये कीटाणु एसिड तैयार करते हैं जो धीरे धीरे दांतों का इनामेल नष्ट करके दांतों में गड्ढे या कैविटी तैयार कर देते हैं और कैविटी बनने के कारण दांत की दूसरी सतह जो डेंटिन कहलाता है मुंह के वातावरण में आ जाता है और डेंटिन के मुंह के वातावरण में आते ही ठंडा और गर्म खाने पर कनकनी होने लगता है। दांतों में कनकनी के निदान, दांतों में कनकनी को रोकने के लिए विशेष प्रकार के पेस्ट या माउथ वॉश आता है। इन पेस्टों एवं माउथ वॉश के सेवन से आराम मिलता है क्योंकि इसे रासायनिक पदार्थ होता है जो कि दांत के सतह पर सुरक्षा कवच बनाता है। नष्ट या खराब हो चुकी दांतों की बनावट को विशेष प्रकार से सीमेंट के द्वारा फिलिंग करने से दांतों की कनकनी से छुटकारा पाया जा सकता है। फ्लोराइड का इस्तेमाल दांतों के आवरण में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है जो उन्हें मजबूत बनाता है और सड़न से बचाता है। फ्लोराइड का उपयोग दांत सड़ने से बचाने का एक श्रेष्ठ उपाय है। फ्लोराइड टूथपेस्ट से नियमित दांत का सफाई करनी चाहिए। ब्रशिंग, नरम मुलायम ब्रश को अपने मसूड़ों पर 45 डिग्री कोण पर रखकर गोल गोल घुमाने एवं मसूड़ों पर हल्की मालिश करें। इस तरह धीरे धीरे दांतों की बाहरी और भीतरी दोनों सतह साफ करें। ब्रश दिन में 2 बार करें तथा 2 मिनट तक ही करें। इससे दांतों में घिसावट नहीं आएगा और दांत की सही सफाई भी हो जाएगी।
1: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे दांतों में कनकनी कारण और निदान। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार थापड़। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये देशगान।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

0: अनूप जलोटा और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे वाणी जयराम और राजेंद्र काजरू को।
1: एपिसोड 44 4-4

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं।

श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है? इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में आपने सुना वाणी जयराम और राजेंद्र काजरू को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन हम आपको सुनवाएंगे 9:10 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 10 बजे, 12 बजे, 1:15 पर और अपराह्न 2:30 पर। दिन के 11 बजे समय होगा उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं के लिए हमारा कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:40 पर और शाम 7:52 पर। विद्यापति गीतों का समय होगा संध्या 6:10 पर। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद। सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे संध्या 6:30 से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे जागरूक गांव खेती गृहस्थी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। रात 8 बजे समय होगा संसद समीक्षा का। हमारा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनेंगे रात 8:15 से। संसद में चले प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 10 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: मिनट होने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्याभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्वक्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिक सहभागितायाः, सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादक मुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधः।

0: निरोधाय कठोरदण्डविधानं सहैव द्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24,000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके दशवर्षात्मकः कारावासः, 10,00,000 दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्रन्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: राज्यसभायां 26,000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतोः 4 मृत्युमुपगताः, सहैव 4,00,000 जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गङ्गाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार, गोमुख, गङ्गोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश सर्वकाराभ्यां व्यापकप्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन

0: विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार मिथिला सुनियार समस्त श्रोतागण के आजुक एहि अंक में हम प्रवीण सुस्वागतम करी छी।
0: साथ ही मैं हूं आपका रेडियो मित्र भवेश, मेरी ओर से भी प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।
1: आपको भी नमस्कार, स्वागत है भवेश जी। जैसे कि कार्यक्रम में सभी दिन हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं, करी छी।

0: सुविचार आई हम ले लो है रहीम सर, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकत करत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम के ऐ उक्त में गुण रहस्य छे, जे उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होई छे, चरित्र होई छे, हुनका कोनो तरह कुसंगति खराब नहीं को सके छे। जेना विषधर सांप चंदन के गाछ में लिपटायल रहे हैं और दोनों के अलग अलग से गुण छे। चंदन शीतलता के प्रतीक होई छे और सांप विष के प्रतीक होई छे, लेकिन एक दूसर के गुण नहीं दो पावे छे, अने अपगुण दो पावे छे। तै मनुष्य जे उत्तम प्रकृति के होई छथि, ओ कोनो तरह कुसंगति में फसियो क निकल जाय छथि अपन गुण बल से। तै हमेशा हमरा सब के ई चेत में रहबाक चाही जे हमर सब के प्रत्येक कृति दू श्रेणी में अबैत छै, या तो उत्तम या असत्य। जकर संगे अहाँ चलब ओ अहाँ के विवेक पर निर्भर करैत अछि। सत्य पथ हमेशा सफलता के ओर अग्रसरित करै छै और असत्य पथ माया जाल में उलझाबै छै जीवन के, बस यह टा सत्य अछि। कार्यक्रम के आगा लऽ चलै छी
1: जी,
0: और आइए 30 जुलाई और 30 जुलाई के इतिहास में किछु एक दूटा बात जे छै से अंश राखल जाय।
1: प्रवीण जी, 30 जुलाई के इतिहास में कई प्रमुख घटनाएं दर्ज हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज ही के दिन हुई थी, 2012 का उत्तर भारत का महा ब्लैकआउट आज ही के दिन हुआ था, और 2013 में आज ही के दिन पहला विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया गया था। बात करें अगर प्रसिद्ध जन्म की, तो भारत की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म आज ही के दिन हुआ था, 1886 ईस्वी में।
0: इतिहास तो हर पल लिखाइते अछि आ लिखाइते रहत, बनल अछि जे इतिहास बनि गेल अछि और जे क्षण बीतैए ओ इतिहास में। तैं देश के प्रति कोनो एहन कार्य करी जे इतिहास में अहूँ के सोनाक्षर में नाम आवे। ई अंश के संग कार्यक्रम आगा बढ़ैत आप सब हम सब एकटा मैथिली गीत सुनना चाहब, तो आओ सुनै छी ई मैथिली गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मैथिली गीत के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। अब वक्त हो चला है हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं प्रवीण कुमार झा।
3: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार झा। बिहार आंगनबाड़ी केंद्र सब में 22,891 पद सब पर होयत बहाली। 2 महीना में लागू होयत ई कैबिनेट प्रणाली। बिहार TRE4 32,388 शिक्षक शिक्षिका सब के होयत नियुक्ति अगला मास। विज्ञापन से हो अगले मास में आयत। दरभंगा मधुबनी में 9 सहकारी चीनी मिल स्थापित होयत। जना कि ज्ञात हो जे पहले सर रैयाम सकरी चीनी मिल जे बंद भ गेल चल, ओ सहकारी समिति सब द्वारा से नव ढंग से शुरुआत होयत। एहि में बिहार सरकार 40% योगदान देता से कैबिनेट के मंजूरी भ चुकल अछि। ई विषय से ल क बिहार के कुशियार उपजाव वाला किसान सब में देखल गेल अछि जे काफी खुशी अछि। ज्ञात हो कि पहले किसान सब के मूल आमदनी से कुशियारे से होइत छल, जखन रैयाम और सकरी मिल शुरू भेल छल और किसान सब ओहि में अपन कुशियार बेच कर आर्थिक आमदनी करे छला। सनै सनै ई मिल सब बंद होइत गेल और किसी जे कुशियार किसान उपजाबे छला ओहो सब

मायूस भ क कुसियारक खेती छोड़ देला। आप सरकार एहि विषय पर ग्राम पंचायत स्तर पर काज कर रहल अछि जे किसान सब अब बेसी से बेसी रकबा में कुसियारक खेती करैत जैसे कि चीनी मिल के कुसियारक आपूर्ति सौ समय होए और किसानों सबके आमदनी बढ़ेन। एहि हेत सरकार पहले से कृत संकल्प छल और संग संग एकर काज में तेज गति देल गेल। आब निर्णय के क्षण अछि, आब बहुत जल्द एकर शुभारंभ भ जाय।

0: सरकार पहले से कृत संकल्प छल और संग संग एकर काज में तेज गति देल गेल। आब निर्णय के क्षण अछि, अब बहुत जल्द एकर शुभारंभ भो जायत। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है।
5: आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हालचाल में पुनः स्वागत है। दरभंगा नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला लागत 8 अगस्त 2026 को, जै में 25 कंपनी सब 3000 से बेसी युवा युवती सबके नौकरी देता। बेरोजगार युवा युवती सबके लेल ई विशेष अवसर भ रहल अछि। अहाँ सब तैयारी आरंभ कर लियो और 8 अगस्त को दरभंगा में ई नियोजन मेला लागत, ते में आओ और अपन भागी के अजमाओ, भ सके के इमे अहाँ के नौकरी भ जाए। सावन मास आई से आरंभ भ गेल। शिव भक्त सब शिवालय सजेला। सावन मास शिव प्रिय मास मानल जाइत अछि। एहि मास में खास कऽ सोम दिन, जकरा सोमवारी कहल जाइत अछि, विशेष पूजा अर्चना होइत अछि सब शिवालय में। शिव मंदिर सब में विशेष भीड़ रहैत अछि। एहि साल सावन मास में 4 सोमवारी पड़ि रहल अछि। एहि मास में कांवर यात्रा के विशेष देखल जाइत अछि, जाहिमे जगह जगह से पवित्र गंगा जल लऽ कऽ शिवालय सब में शिव भक्त सब कठिन यात्रा तय कऽ कऽ गंगा जल शिव के अभिषेक करै छथि और अपन अपन मनोकामना पूर्ण के लेल विशेष प्रार्थना अर्चना करै छथि। शिव सब भक्ति सब डूबल इमा शिव मय होइत अछि। खास कऽ शिवालय सब में भीड़ देखते बनैत अछि और ओहो सोम दिन के विशेष पूजा ओहि में होइत अछि, जाहि में शिव मंदिर में शिव अर्चना, शिव आरती और संग संग रुद्राभिषेक पर विशेष जोर देल जाइत अछि। दरभंगा जिला अधिकारी दिल्ली मोर बस स्टैंड निर्माण के निरीक्षण कैल केला और निर्माण कार्य में संतुष्टि जतबैत कहला जे एकरा शीघ्र पूरा करू, तखन कार्य पूरा होयत और एहि काज समय तेजी लाओल जाए। संग संग अधीनस्थ अधिकारी सबके निर्देश दिला जे किछु कमी भ रहल अछि ताहि पर ध्यान राखल जाए और निर्माण सौ समय और तेज गति से हुए, आम जनता के लिए विशेष आवश्यक छे। कार्य गुरु पूर्णिमा छल। एहि अवसर पर ठाम ठाम विशेष कार्यक्रम भेल। गुरु शिष्य परंपरा के अनुयायी सब ठाम ठाम विशेष कार्यक्रम केला। अपन अपन गुरु पूजना के संग सुविचार, गुरु मंत्र ई सब लेला और सुनला आ ओकरा आत्मसात केला। खास कर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक

0: स्नातकोत्तर व्याकरण विभाग में गुरु पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रम आयोजन कैल गेल। अहि पर विशेष मंतव्य सामने आयल, गुरु केवल ज्ञान नहीं देत अछि अपितु व्यक्तित्व निर्माण करैत अछि। इसार तो संसार बुझैत अछि जे बिन गुरु ज्ञान नहीं पाबि सकै छी, यानी बिना गुरु के ज्ञान ककरो नहीं भ सकैत अछि। क्यों छी हुनका ककरो ने ककरो आत्मसात कक गुरु बनवहे पड़े छी। तै गुरु के महिमा अपरंपार होइ छी और ओहुना कहल गेल अछि जे ईश्वर सब पैघ गुरु के स्थान होइत अछि। राजो महाराजा के जहन दौर छलैए तखनो गुरु के जे कुर्सी होइ छलैए ओ राजो कुर्सी से पैघ मानल जाइ छलैए, आ राजो बिना गुरु मंत्र के कोनो कार्य नहीं करै छला है। तै गुरु परिणामा के अहाँ सबके विशेष विशेष शुभकामना। सुरक्षा गार्ड लेल नव एजेंसी बहाली में 40,000 के घूस, ई आरोप सामने में आयल। बेनीपुर बाजार में चलल बुलझड़ल, अतिक्रमण हटल, आम जनता जे छला ऐसा समाधान होइत राहत पेला। अतिक्रमण के कारण बेनीपुर बाजार हरदम हाँफत रहित अछि। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के बैठक में 800 स्वयंसेवक बनल, ओहिमे सहभागिताक लेल अपन आवेदन देलैन। ई विशेष प्रशिक्षण देल जायत, अहिमे विशेष ज्ञान अहि के संबंध में आपदा प्रबंधन के बारे में देल जायत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आदेशानुसार 11 सदस्यीय समिति के एक महत्वपूर्ण बैठकी बीएड परिसर में संयंत्र में संपन्न भेल। एमएस समस्वक प्रथम डॉक्टर आर एन चौरसिया के अध्यक्षता में आयोजित एहि बैठकी में आपदा प्रबंधन के आगामी 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के रूपरेखा तय कयल गेल। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य के सहयोग से हुआ वाला इस प्रशिक्षण में अगस्त और सितंबर माह के दौरान कुल 4 बैच 800 सबके आपदा प्रबंधन के विशेष प्रशिक्षण देल जायत। प्रशिक्षण प्राप्त करय वाला स्वयंसेवक आपदा के समय त्वरित राहत आ बचाव कार्य के लेल आपदा मित्र के रूप में तैयार हेता। बैठकी में ई निर्णय लेल गेल जे एहि प्रशिक्षण में माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत 1840 वर्ष आयु वर्ग के दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर जिला के सक्रिय NLS स्वयंसेवक छात्र छात्रा सब भाग लो सकै छथि। एहि संग हालचाल संपन्न भेल। नमस्कार।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: और मौसम संबंधी किसी जानकारी लोली, आई मौसम के जो मिजाज रहत से अधिकतम तापमान अहाँ के 33 डिग्री सेल्सियस रह सकते अछि और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकते अछि। तेज बसात चलो के संभावना अछि ओ पूर्वा,
3: अब जी
0: आपकी से हम सब बातचीत कोली
3: जी
0: जे आई जेना कि हाल साल में ज्ञात भेल जे आई सावन महीना शुरू हो गेल अछि
3: जी,
0: और सावन महीना में विशेष विशेष आराधना पूजा जे कही से शिव भक्त सब करै छथि। और क्या करै छथि से तो वो सब जनता, लेकिन जना हम बुझै छी हमरा बुझल अछि
3: जी
0: जे मास तो सब उत्तम होत अछि लेकिन प्रिय मास कोनो कोनो होइत अछि। तहिना हम मानव अ सावन मास के शिव प्रिय मास के रूप में आप जाना लगलूँ हैं। और विशेष कर देखल गेल अछि जे जत्ते शिवालय अछि संसार भरि में अहि मास में विशेष रूप से ओ सजे धजैत अछि शिव भक्त के द्वारा या मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा, लेकिन कतौ द्वारा विशेष पूजा अर्चना होइत अछि। कतौ कतौ तो एतेक जनमानस उमरैत अछि जे मंदिर प्रबंधन के विशेष

0: आयोजन कऽ कऽ ओकरा से कहुना समस्या समाधान कयल जाइ छै। जेना हम उदाहरण के लेल छै बाबा बैद्यनाथ धाम मे आब कांवर सबके एतेक कांवरिया सब पहुँचता जे एक दिन में लाखों लाख कांवरिया जल चढ़बै छलाह है। तो प्रबंधन समय सोचलक जे क्या ओहिमे अर्घा लगा देल जाए, क्या तो मंदिर में जाकर जल अर्पण केनाइ में भीड़ बहुत लगै छल, सबके सहजता से पूजा अर्चना और जलार्पण नहीं होइत छल, तै आब ओहिमे से अर्घा लगा देल गेल अछि जैसे कि समय कम लगैत अछि और जे केओ कमरिया या साधारण भक्ति जाय छथि जल अर्पण करय लए ओ अर्घा में जल खसेला बाहर में और जल सीधे शिवलिंग पर जाकर खसैत अछि, हुनकर जे मनोकामना होइ छनि ओ पूर्ण होइ छै। ई पवित्र महीना में आस्था विश्वास के एकटा अटूट जे मन होइ छै से लोक के रहै छै शिव के प्रति और शिवमय भऽ रहल अछि। खास कऽ विशेष देखल जाइत अछि जे सोम दिन के जे सोमवारी कहल जाइ छै जे एहि सावन मास मे चैटा होयत, ओहि दिन तक किछु अलगे रहैत अछि। हमर माय बहिन सब सोमवारी व्रत करै छै जे सबके बुझल अछि आ खास कऽ ओ सब ओहि दिन विशेष पूजा अर्चना करय चाहै छथि और ओहि दिन भरो दिन ओ सब शिवमय भेल रहै छथि और कतौ ने कतौ जाकऽ शिव मंदिर में शिव पर जल अर्पित कऽ अपन मनोकामना पूर्ण करय चाहै छथि।
1: और जब सावन की बात आपने कर ही दी है प्रवीण जी,
0: जी जी,
1: तो श्रोताओं को एक सावन से संबंधित गाना सुनवा दें।
0: अवश्य
1: जी।

0: गीत सुन लूँ सावन महीना में ये सावन के प्रिय गीत, और संगे संगे अब हम सब किछ गप सप को ली। मानव गरिमा और संवेदनशील समाज
1: जी
0: दोनों अनुनय संबंधित होइत अछि
1: जी।
0: सने सने जो जो समाज शिक्षित होइत गेल, समाज संवेदनशील होइत गेल, और मानवीय गरिमा के एकटा स्वरूप बनल
1: जी।
0: आजुक दौर में जखन हम सब कहै छी कि हम सब स्मार्ट युग में आबि गेल छी
1: जी,
0: घर घर स्मार्ट मोबाइल चल गेल अछि, नव संचार क्रांति में हम सब जीव रहल छी, घंटों के काम मिनटों में आप घरे घर बैस के भ रहल अछि, सबटा कार्यक्रम ऑनलाइन लगभग भ रहल अछि। एहि युग में समाजक की दायित्व होइ छै
1: जी,
0: जे समाज केना चले केना रहे, जे हमर आवा वाला पीढ़ी हमर की अनुकरण करे, से विषय गंभीर।
1: आ प्रवीण जी देखिए, बात अगर मानव गरिमा और संवेदनशील समाज की करें तो दूसरों के सुख दुख को समझने वाला समाज एक बेहतर दुनिया बनाने के दो मुख्य आधार हैं ये। इसका अर्थ हर व्यक्ति का आदर और जरूरतमंदों की मदद करना है।
0: अवश्य
1: जी,
0: निश्चित रूप से कहलूँ, ओना देखलूँ हैं हम जो समाज शिक्षित होइत गेल ओहिठाम गरमाई में उपस्थिति
1: जी
0: समाज के भेलै है, लेकिन एखनो बहुत जगह बाकी अछि, खास कर वंचित तबका जे छै ताहिमे शिक्षा के एखनो अभाव भ रहल छै। भले ही हम अहाँ समाज होए या सरकार होए या जे केओ होए, से हम सब चाहे छी जे सब शिक्षित हुए, सब स्कूल परंपरा से जुड़े, लेकिन ओहि में एखनो कमी आबि रहल है, और ओ कतौ होए, ओहि कमी कतौ होए, तकर समाज एखनो तब काट नहीं ढूंढ पेलक।
1: और इस कमी को हम प्रवीण जी ऐसे दूर कर सकते हैं कि मानव गरिमा का अर्थ क्या है पहले हम इसे समझें।
0: हाँ।
1: और इसे हम समझने के लिए व्यक्तिगत सम्मान के तौर पर, समान अवसर के तौर पर, स्वयं रोजगार के तौर पर समझ सकते हैं। अगर हम व्यक्तिगत सम्मान की बात करें तो हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के अच्छे तरीके से जीने का हक है। वहीं पर अगर हम समान अवसर की बात करें तो सबको आगे बढ़ने और अपने अधिकारों का उपयोग करने की आज़ादी मिलनी चाहिए,
0: निश्चित रूप से।
1: और अगर स्वयं रोजगार की बात करें तो लोगों को अपने हुनर के तौर पर, अपने दम पर मानव गरिमा योजना जैसी पहल करना और गरीब और पिछड़े वर्गों को मुफ्त औजार व सहायता देना है।
0: एकदम सत्य कहलूँ है। देखियो, सबटा सरकारें करते से नहीं हुई जी, समाजों के आगा आवा पड़े।
1: बिल्कुल, समाज का भी दायित्व है।
0: इतने बुझियो जतेक हमर ओहिठाम से उच्च कोटि के नौकरी पेशा के लोग छथि, ओ अहाँ के

0: टैक्स दै छथि
1: जी,
0: यानी हुनका जे अपन गाढ़ा कमाइ छनि ताहिमे सँ किछु परसेंट सरकार टैक्स के रूप में हुनका सँ वापस लऽ लै छै। ओ क्या लेल जाइ छै? ओ एहि दुआरे लेल जाइ छै तऽ ओहो सब दै छथिन, एहि दुआरे जे वंचित वर्ग जे छै या वंचित विकास जे छै ओ विकास ओहि पैसा सँ होइ, ओ सम्यक होइ छै कि
1: ये कर आपकी ही सेवा में, हमारी ही सेवा में सरकार के द्वारा दी जाती है
0: जी
1: जी।
0: तो ओहि में हमरा सबके तो निश्चित रूप से सहयोग करबाक चाही। हाँ, हमरा सबके एतेक ध्यान जरूर रखना चाहिए अपन अपन आँखि के खोल कर जे ओ पैसा से जे विकास होइत रहैत अछि ओ विकास में से कोनो तरहक गड़बड़ी नहीं होय, तकर निरीक्षण समाजे करै छै जतय विकास होइत रहै छै आ ओ दायित्व समाजे के छै। तै गड़बड़ी में उपस्थित समाज के आवश्यक होइ छै, केवल अपने टा पेट भर जाए बाकी भूखल रहे ई विचार कखनो उत्तम नहीं होइ छै। और एटा कहावत छै मिथिला मैथिली में जे अपन पेट तो कुकुरो भर लेते अछि, कहबाक तात्पर्य ई अछि उदाहरण गेल गेलै कुकुर के, लेकिन मनुष्यो में एहन छथि जे मात्र मात्र मात्र अपने विषय मात्र सोचै छथि, एको हम द्वितीयो नास्ति, यानी केवल हमर विकास भऽ जाए बाकी कतौ जाए, ई चेतना जे छनि हुनकर से नीक पक्ष के नहीं छनि। हमरा में करुणा हेबाक चाही, हमरा में संवेदना हेबाक चाही, हम यदि ज्ञानी भऽ गेल छी, हम यदि विकसित के तरफ कदम बढ़ा लेने छी आ हमर भाई बंधु सब पाछा पर छूटल छथि तऽ हमर कर्तव्य अछि जे हम ठमकी रुकी सिंहावलोकन करी अपन समाज के और फिर वापस होए और ओहि वंचित वर्ग के हाथ पकड़ कर अपना संगे आत्मसात करो के कोशिश करी। यह छै राष्ट्रीय भावना, समता की भावना, जी संविधानो कहै छै समता के अधिकार, रहलै कर्तव्य के बात। तऽ बहुतो एहन बुद्धि रूप सँ या शारीरिक रूप सँ या मानवीय रूप सँ सामाजिक रूप सँ एखनो बहुतो पिछड़ल अछि, तै ओकर जे पिछड़पन छै तै मे हमसब कनी मनी सबल दऽ देबै तऽ सरकार तऽ करिए रहल छै, तऽ ओकर मे जागरूक और बढ़ते प्रचार प्रसार बढ़ते आ यदि वो शिक्षित होयत जागरूक होयत तो हमरा सब के वो बेसी परेशान नहीं करत, कष्ट नहीं देत, किया तो देखल गेलै है जे अशिक्षित आदमी अशिक्षित समाज हमरे सब के अछि और वो सब विकास से दूर दूर तक कोनो संबंध नहीं रखते अछि जे एहि युग में हेबाक चाही। तै हमर सब के जे राष्ट्रीय कल्पना अछि जे हम विकसित भारत बनायब 2047 में, ओ तखने पूरा होयत जखन सशक्त समाज होयत ओहो सब ठाम वंचित वर्ग से लऽ कऽ और अन्य वर्ग तक। आओ बातचीत आरो करब
1: जी,
0: एकटा बीच में गीतनाद के आनंद ली।

0: प्रवीण जी, आदमी मुसाफिर है, बिल्कुल सही बात है, और इस सफ़र में अपने कर्मों को करते जाना है और इतिहास को रचते जाना है।
1: जी, इतिहास के बात करूँ, विरासत के बात करूँ, तो एकटा गप सब बीच में कोली, सचमुच में अपन अपन हस्ताक्षर अबै है, अपन काज करै है, और फिर ई चक्र चलै छै, ई पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते युग युग तक। तै मुसाफिर छी, मुसाफिर रुकै नै छै, सुस्ताइ छै या फिर निकल चलै छै। तै एकर एकटा मुसाफिर के हमसब गप करी जे भारत में बनऽ वला खिलौना के की विरासत छै और ओकर विरासत के कतह तक हम सब पहुँचेलहुँ हैं, अब कतह तक लऽ जाए, ओहि पर कनी गप सब करी।
0: जी प्रवीण जी, अगर भारतीय खिलौनों की समृद्ध विरासत की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति कथाओं और हस्तशिल्प कला का अनूठा प्रतीक है। पारंपरिक खिलौनों बच्चों के मानसिक विकास के साथ ही हमारी लोक कथाओं को जीवित रखता है।
1: निक बात
0: जी।
1: और बीच में हम कहब जे खिलौना एहन शब्द है जे बचपन अहाँ के याद कराए देत, कते खिलौना लय हम सब कानल खिजर रूठल है
0: जी,
1: और कते खिलौना के तोड़ फोड़ के फेंक देने है, से याद नहीं कह सकै छी, कतौ बचपना होइ छै। और बच्चा यदि कथू लए रुसैया सबसे बेसी तो ओ खिलौने लए, तै बच्चा के प्रिय जे चीज ओकर विरासत कतेक नीक हुए। तो अहाँ जहाँ चर्चा केलहुँ सिंध घाटी से खिलौना के इतिहास बनल अछि, आब आज एहि युग में तो आब तब स्मार्ट खिलौना सबसे आबि गेल
0: जी।
1: हाथ एना के इशारा करबै तो खिलौना किछु करऽ लागत, हाथ एना करबै यानी मतलब सीधे बदल गेले। पहिलका खिलौना होइ छलै है माटि के
0: जी,
1: चीनी मिट्टी के
0: जी,
1: या कपड़ा लत्ता सब बनबै छलै, एखनो बढ़िया टेडी बियर सब रुई या कपड़ा सब बनै है।
0: और जब मिट्टी की बात की तो पुराने जमाने में मिट्टी के गुड़िया, मिट्टी की गुड़िया बनती थी, मिट्टी की गाड़ियां बनती थी, सीटी पशुओं की आकृति वाली मूर्तियां बनती थी। और अगर बोर्ड गेम की बात करें तो आज तक तो आजकल तो बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, जिसे आपने बताया कि जी। और पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो शतरंज, सांप सीढ़ी, चौपर जैसे खेल खेले जाते थे।
1: जी जी, एक विरासत तो बहुत
0: जी
1: पै गए, ये धरोहर सो अछि। औना हमर सब के विरासत जो हुई है से हमर सब के संस्कृत सभ्यता के पहचान है, एक तो बचा कर रखबे करब, संगे संगे नव आविष्कार जो भ रहा है, क्या तो युग परिवर्तन होइत अछि, और परिवर्तन के दौर में सब किछ परिवर्तित भ जाइए, समाज से लग राष्ट्र से लक और रहन सहन से लक और सब तरह के व्यवस्था। तो हम बात दोनों दौर के करब, जो एखनो से माटि के खिलौना बनैया एहन बातें नहीं बनैए, एखनो बनैए चीनी मिट्टी खिलौना सब और विभिन्न तरह के मूर्ति सब, कलाकार सब बहुतो तरह के अबै छै, देखल गेल मिथिलो क्षेत्र में जे राजस्थान के कलाकार सब आबि कऽ नहीं कतौ जगह भेटै छै, तऽ रोड साइड में फैल जगह चुनै छथि आ ओहिठाम एक से एक निर्माण करै छथि खिलौना के। तै ई समृद्ध विरासत भारतीय इतिहास अछि जे खिलौना के तकरा सम्हारब सबके कर्तव्य अछि। आ आधुनिक दौर में तऽ खिलौना आब बहुतो सामान के बनैत अछि, आ बाहर के खिलौना के तो छोड़ू, आब तो बैटरी वाला खिलौना सब आबि गेले, जे एहन बैटरी लगा दै छै जे 24 घंटा ताली पिटै छै, झाइल पिटै छै, या बच्चा के विभिन्न तरह के मनोरंजन करै छै।
0: प्रवीण जी, बैटरी की ही बात ना करें, सेंसर युक्त खिलौना आ गया है कि हम अपने हाथ से ऐसे इशारा करते हैं और खिलौना अपना एक्ट करने लगता है।
1: जी जी जी जी, तो ई जे विरासत छै या ई परिवर्तन छै से युग के कारण भेलै है, और ई होइत रहतै, विज्ञान जतेक आविष्कार करत, चमत्कार करत, ततेक खिलौना के विरासत और वैज्ञानिक सब ओहिमे लगले रहै छथि, नित्य नव शोध करै छथि ओ सब तरह, तै खिलौनों में शोध होइत अछि। कार्यक्रम के आगू बढ़बै छी, गप सब फेर करब अगला अंक में। आब समय अछि जे कार्यक्रम के अंत में चलैत चलैत हम सब एकटा सुंदर संग गीत सुन।

0: के संग हम सब बहल समय के संग हम सब बनल रहे छी और समय ही कहित अछि जे आजुक एहि कार्यक्रम के समाप्त करय के बेर आबि गेल अछि। तै हम प्रवीण हमरा सने भवेश कुमार जी के आज्ञा दिय।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
5: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
6: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
7: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात
8: वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
9: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
13: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास।

0: और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का

0: फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने

0: 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगान खत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर 3:47 स्पर्धा में दिलीप महादु गावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाठी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश के राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर 3:47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 years इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammed Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुगरे अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद वसील ने चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं और फास्ट ट्रैक अदालतों के कयाम की तजवीज है। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 में कई अहम गुंजाइशों को शामिल किया गया है, जिनमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और कसूरवार करार दिए गए अफराद की इमलाक जब्ती जैसे सख्त इल्तजामात शामिल हैं। यह कानून इस बात को लाजमी करार देता है कि हर रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर समाज के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करें। अमले, शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए बिल में तरमीम की गई है, ताकि पेपर लीक मामलों में जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। बिल को कल मंजूर किए जाने के बाद ऐवान-ए-ज़ेरीं की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा ने कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को कल मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। इस मुजवजा कानून के जरिए वंदे मातरम को कौमी तराने, जनगण मन की तरह कानूनी तहफ्फुज हासिल हो जाएगा। इस मुजवजा कानून के जरिए कौमी ताजीम की बेहरमती पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी के बाद ऐवान

0: बाला की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार के बांकीपुर हलके, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया हलके में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बिहार में बीजेपी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उनकी बांकीपुर सीट खाली होने के सबब वहां जिमनी चुनाव जरूरी हो गया था। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि राय दहिंदगान वोट डालने के लिए सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकज पहुंच रहे हैं। पटना के बांकीपुर असेंबली हलके की 164 पोलिंग स्टेशनों के सभी 422 पोलिंग बूथ्स पर पुरान तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस सीट पर 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि कुल 379,616 वोटर्स उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। गुजरात की मांजलपुर असेंबली हलके के लिए बीजेपी ने सतीश पटेल को, जबकि कांग्रेस ने भीका भाई रबारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से बीजेपी के रुकने असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के सबब जिमनी चुनाव जरूरी हो गया था। इंतखाबी कमीशन ने 100% वेबकास्टिंग, पोलिंग मराकज के बाहर मोबाइल फोन जमा कराने के काउंटर्स और ऑनलाइन जाब्ता अमल से मुतालिक शिकायतों के लिए सी विजिल सहूलतें मुतारिफ कराई हैं। मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती को नाअहल करार दिए जाने के बाद दतिया सीट खाली हो गई थी। दतिया असेंबली हलके से चुनाव के लिए सभी 291 पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी इकदाम किए गए हैं और पोलिंग से मुतालिक सभी सरगर्मियों की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जा रही है। इस हलके से कुल 220,410 राय दहिंदगान वोट डालने के मजाज हैं। आजादाना और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने की गरज से बड़ी तादाद में मरकजी और रियासती सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वजीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में कल काबीना की एक मीटिंग में सिलसिले में तजवीज को मंजूरी दी गई। मीडिया के अफराद से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि काबीना ने खेलों से मुतालिक बिहार की पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 97 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की स्कीमों के निफाज को भी मंजूरी दी गई है। शहरी तरक्यात के शोबे में अमृत 2.0 के तहत तकरीबन किशनगंज में पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय में पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ 96 लाख से ज्यादा रुपए मंजूर किए गए हैं। काबीना ने रियासत के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और तिजारती वर्मी कंपोस्ट इकाइयां कायम करने का भी फैसला किया है।
1: राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बुहर अहमर के बहरान और आलमी उथल पुथल के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात में मौजूदा माली साल के अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% का इजाफा इंदराज हुआ है। जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रही। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि यह कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इकतसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाज रानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनती अंजुमनों के साथ मीटिंग की, जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निजाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा लेना था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के बाद मुल्क की आलमी मसाबिका आरई को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब गोयल ने मीटिंग के दौरान मजबूत मसाबिका आरई पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बरामदाती इको निज़ाम की तामीर की हुकूमत के अज़्म को दोहराया ताकि भारत की माशी तरक्की में मदद मिले और विकसित भारत का नज़रिया पूरा किया जा सके। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इख्तरा, स्टार्टअप्स और जदीद टेक्नोलॉजी, MSMEs और आलमी सतह की मुकाबला जाती मैन्युफैक्चरिंग भारत को माशी तरक्की के अगले मरहले तक ले जाएगी और साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। नई दिल्ली में 22वें जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत को महारत की जानिब बढ़ना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मेयार, इख्तरा और मुकाबला जाती सलाहियत के जरिए भारत में बनी हुई मसनूआत को आलमी सतह पर

लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान जारी। राज्य मंत्री परिषद ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी। प्रदेश में विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू, मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 3,79,000 से अधिक मतदाता 25 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। लंबे समय से भाजपा का कट रही इस सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन सुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। इधर पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदान के लिए मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आशीष के पास। जी आशीष, कैसा माहौल है मतदान केंद्र का?
1: जी अभिषेक, मैं इस समय पटना विमेंस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर हूँ। यहाँ महिला मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है। सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से निकलकर लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हम आपकी सीधी बात करवाते हैं एक मतदाता से जिन्होंने अभी अभी अपना मतदान किया है।
2: संजू कुमार, उम्मीद तो यही है कि अच्छा करे, विकास करे, और क्या है इसमें।
3: सबसे पहले मतदान किया है आपने, और भी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
2: हम तो यही कहते हैं कि सब लोग से अपील करते हैं कि भाई सब लोग वोट दीजिए, अपना मतदान भूलिए मत।
1: जी अभिषेक, मैंने और भी कुछ मतदाताओं से बात की जिन्होंने कहा कि वो उन्होंने विकास समेत अन्य मुद्दों पर अपना मतदान किया है।
0: जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मतदान के लिए 164 मतदान केंद्रों पर कुल 422 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 30 आदर्श मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा 29 चलंत मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी बूथों से मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। पोलिंग बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों के साथ साथ जिला पुलिस बल के 5,000 जवानों और होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है। मतदाता टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 पर निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी जा सकती है। प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें सेविका के 6,141 और सहायिका के 16,750 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2026 को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पोषक क्षेत्र के बहुल्य वर्ग की महिलाओं को चयन में प्राथमिकता मिलेगी।
4: समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें 2022 के पूर्व जो व्यवस्था थी बाहुल्यता के आधार पर चयन के, उस प्रक्रिया को लाया जा रहा है। इससे करीब करीब 22,000 सेविका सहायिकाओं के चयन का मार्ग प्रशस्त होगा।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में खेलों के विकास के लिए बिहार खेल नीति 2026 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के देने के साथ साथ इनके लिए पेंशन

0: योजना का भी प्रावधान है।
1: बिहार खेल नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके चार पिलर हैं: राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक कल्याण हेतु खेल तथा खेल एवं शिक्षा का एकीकरण। इसके लिए पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पहली बार है जब बिहार राज्य में खेल नीति की स्वीकृति दी गई।
0: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत कृषि के अतिरिक्त डेयरी, मत्स्य, कृषि व्यवसाय, भंडारण, प्रसंस्करण, सेवा क्षेत्र, पर्यटन और उभरते हुए गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
1: बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसका विजन है सशक्त सहकारिता समृद्ध बिहार। इसका मिशन है परंपरागत सहकारी संरचना को सुदृढ़ करते हुए सहकारी समितियों को आधुनिक, उत्तरदायी एवं प्रतिस्पर्धी आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करना, नए एवं गैर परंपरागत क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से उन्हें भविष्य की चुनौतियों एवं अवसरों के लिए सक्षम बनाना, साथ ही युवाओं एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
0: श्री चौधरी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने चौथे कृषि रोडमैप के लिए 367 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने पटना और मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार निवारण मामलों के लिए 3 विशेष अदालतों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को दरभंगा जिले में रैयाम और मधुबनी जिले में सकरी चीनी मिल की आधारशिला रखेंगे। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के तहत इन दोनों मिलों की पुनर्स्थापना हो रही है। श्री कुमार ने बताया कि दोनों मिलों में अगले सत्र से पेराई शुरू करने का लक्ष्य है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 नवंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी। सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और 20 नवंबर को हम लोग इसका शुरुआत भी करेंगे।
0: राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नए प्रावधान के तहत प्रत्येक 500 रिक्तियों पर एक पद ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान छूट मिलेगी तथा उन्हें बिहार का मूल निवासी और सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र पेश करना होगा। बिहार पुलिस के सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने के 4 सोमवार पड़ेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि पवित्र महीने की शुरुआत होने के साथ ही पूरा वातावरण शिवमय हो गया है।

मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरियानाथ, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के पैकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के पानावर, लखीसराय के अशोक धाम, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दानापुर मंडल के फतुहा, हरदास बिघा, खुसरूपुर, करोटा, अथमलगोला, मनकट्ठा और गांधी हॉल्ट सहित विभिन्न स्टेशनों पर कई ट्रेनों का अस्थायी ठहराव किया गया है। यह व्यवस्था आज से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। राजधानी पटना में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस साल जिले में अब तक 68 लोगों में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले दो दिनों में 4 नए मरीजों के साथ जुलाई महीने में अब तक डेंगू के 23 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को अगले महीने से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए पूर्व क्षेत्र की टीम का उपकप्तान बनाया गया है। टीम की कप्तानी ईशान किशन करेंगे। 15 वर्षीय वैभव को पहली बार लाल गेंद के इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में उपकप्तान की जिम्मेवारी मिली है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताजा T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में वैभव ने 230 स्थान की छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल किया है। वहीं ईशान किशन T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। वैशाली जिले के चर्चित भुटकुंड शुक्ला हत्याकांड में अदालत हाजीपुर की एक अदालत ने दोषी दीपक कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 1997 में लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई भुटकुंड शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। औरंगाबाद जिले के जमहोर थाना क्षेत्र के बलिकरना गांव में भूमि विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरारपुर इलाके में औषधि विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापेमारी कर लगभग 20 लाख रूपये मूल्य की नकली और सैंपल वाली दवाएं जब्त की है। मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के लव्वा लगान पूर्वी पंचायत के पौरा टोला में सड़क दुर्घटना में महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। पटना पुलिस ने चारधाम यात्रा के नाम पर हेलीकॉप्टर बुकिंग में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा से लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने और बिहार कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है 10 घंटे घमासान के बाद एंटी पेपर लीक बिल पास, लोकसभा में राहुल ने छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर लगाए आरोप, सत्ता पक्ष ने किया विरोध। प्रभात खबर की सुर्खी है राज्य में 55,279 पदों पर बंपर बहाली, 32,388 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, 6,141 सेविका और 16,750 सहायिका की भर्ती। दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के राज्यसभा में दिए बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है E20 से खराब हो सकते हैं BS3 वाहनों के रबड़ के पुर्जे। दैनिक भास्कर ने लिखा है बिजली कनेक्शन महंगा होगा लेकिन उपभोक्ता को सर्विस वायर नहीं देना होगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं बिहार में ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी सरकार। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान जारी। राज्य मंत्री परिषद ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी। प्रदेश में विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू।

0: मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: दीपक पहिलकिन संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल।
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
8: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में

0: कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं। फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222281। मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।
1: आकाशवाणी का ये पटना दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

मैं हूँ भैया, रोसार रोते हुए बोले जा रही थी। मैं हूँ ना, बड़े भाई की परेशानी और फिक्र देखकर रोसार से रहा न गया। आखिरकार उसने अपने बिखरे हुए घर को बचाने की आखिरी कोशिश में अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी, पर उसे अदा कैसे करेगी ये सोच सोच कर वो दिन रात परेशान रहने लगी थी। जब भी ये जुमला उसके कानों से टकराता तो माजी बुनियादों में चली जाती और फिर खुद से दोहराती, मैं हूँ ना भैया, मैं हूँ ना, या अल्लाह मैं करूँ तो क्या करूँ, न तो मेरी कोई जॉब है और न ही कोई और खजाना। उफ, इंसान कितना कमजोर है और फिर भी तकब्बुर व गुरूर में जीता है। इंसान के हाथ से वक्त किस तेजी से गुजर जाता है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, फिर भी उसे लगता है दुनिया का सारा निज़ाम उसी की वजह कर चल रहा है। इंसान तो खुद अपने घर का निज़ाम तक सही से नहीं चला पाता, जो अगर चला लेता तो आज मेरा हंसता खेलता घर यूं न बिखरता। खुद से गुफ्तगू करते हुए रुखसार को कब नींद आ गई और जहन अपनी परेशानी से निजात का रास्ता ढूंढने लगा। उसके कानों में दोनों भाइयों की गुफ्तगू गूंज रही थी। अरे भाई, आप परेशान क्यों होते हैं, मेरी जॉब लगते ही मैं आपको बिजनेस के लिए पैसे दूंगा, आप बस दुआ करें मैं जिस कंपनी में चाहता हूँ वहाँ मेरा काम बन जाए। कई बार अल्लाह भी दूसरों के काम किसी दूसरे इंसान के जरिए ही करवाता है, कई बार दूसरों की दुआ से किसी का काम बना देता है तो कई बार किसी अनजान इंसान को ही मदद के लिए भेज देता है। इस बार उसने भाइयों की मदद एक दूसरे से करवाई और मुझसे बेरोजगार बहन को भी इसमें शामिल कर लिया। छोटे भाई की जॉब लगी तो परेशानी कम न होकर बढ़ गई, जैसा हंगामा घर में कभी न हुआ था। लाडले, तुमने ही तो कहा था जॉब लगेगी तो मेरी मदद करोगे। भैया, आप छोटे भाई से ऐसे मदद की बात कर रहे थे मानो वो उसी के भरोसे बैठे हों। अल्लाह का करना भी कैसा था, जिस कंपनी में लाडले की जॉब लगी उसके लिए भैया ने बहुत दुआएं की थी और उनकी दुआ कबूल भी हो गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसमें आज अब्बू भी शामिल हो गए। तुम अब लाडले से भी पैसे लोगे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, मेरा दिया हुआ पैसा डुबा दिया और अब छोटे भाई से पैसे मांग रहे हो, तुम क्यों नहीं समझ पाते हो लड्डू, तुमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, कब से कोशिश में हो, तुम्हारी मदद करते करते मेरा सारा जमा पैसा खत्म हो गया है, शादी बीवी बच्चे सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं और तुम्हारे साथ में और दो मजीद लोगों को पाल रहा हूँ, अब तो मेरा भी सब खत्म हुआ जा रहा है, जमीन के पैसे भी अब खत्म हो रहे हैं, तुमने कहा था कि अब्बू मदद कर दीजिए, मैं दुगना करके पैसा दूंगा, पर इन 4 सालों में तुमने 1 रुपया भी न दिया। हाँ, लेते ज़रूर रहे, जवान बहन घर में है, उसके रिश्ते की कोई फिक्र नहीं तुम्हें, बस हुआ अब मैं यहाँ लाडले तुम्हें मजीद पैसे नहीं देंगे और अब तुम अपना और बच्चों का कहीं और इंतज़ाम करो, इस महंगाई में मेरा तुम सब को लेकर चलना मुश्किल हो रहा है। भैया खामोशी से सारी बातें सुनते रहे, खुद गुनाहगार महसूस करते हुए अपने कमरे में चले गए। भाभी और बच्चे भी दूर से ये सब देख रहे थे। इधर अम्मी भी खामोश डरी सहमी किचन के पास खड़ी रोए जा रही थी। माँ तो माँ होती है पर कुछ कह नहीं पाई, अब्बू के फैसले ने सबको खामोश कर दिया था। थोड़ी देर बाद भैया कमरे से भाभी और अपना सामान लेकर निकले। हम जा रहे हैं पर यकीन कीजिए अब्बू, बहुत जल्द मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा। इतना सुनना था कि अब्बू ने गुस्से में कहा, जाओ पहले अपने घर को पाल लो फिर मेरा कर्ज देना, 4-5 सालों से यही सब सुन रहा हूँ। अम्मी ने जाकर भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की, पर भाभी ने भैया का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मी आखिर ये मेरे शौहर हैं, ये जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगी, अब परेशान न हो, आप माँ हैं, बस दुआ कीजिएगा। भाई अम्मी से लिपट कर रो पड़े और खुदा हाफिज कहकर चले गए। लाडले के भी कुछ समझ में ना आया कि कब छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई। उसकी जॉब नई नई थी, बार बार कंपनी से फोन आ रहा था, वो अपने कमरे में ही ज्यादा वक्त रहा। जब अम्मी की चीख निकल गई, लड्डू को रोक लीजिए, तो लाडले अपने कमरे से भागता हुआ बाहर आया। क्या हुआ रुखसार, तो कभी अब्बी कहकर मुझसे पूछना चाहा, तो अब्बू ने उसे रोकते हुए कहा, जाने दो भैया को। अब्बू के आगे किसी की न चली और भैया घर छोड़कर चले गए। उधर उनका काम जैसे तैसे चल रहा था। 6 माह बाद जब मैं मिलने गई तो भैया सर पकड़े बैठे थे और भाभी तेल मालिश कर दूं के रट लगा रही थी।

रुसार तुम ही समझाओ अपने भैया को। अस्सलाम अलैकुम भैया कहते हुए मैं घर में दाखिल हुई। भैया की आँखें सुर्ख और नम थी। क्या हुआ भैया, मुझे बताइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलें डॉक्टर को दिखा लीजिए। नहीं रुसार, अब तो बस मौत ही मेरा आखिरी हल है। मुझे गुस्सा आ गया, क्या बकवास करते हैं आप बड़े लोग, इधर अम्मी आपके गम में और इधर आप, आखिर कोई तो हल होगा। कोई हल नहीं रुखसार, ये कर्ज मर्ज की तरह बढ़ता जा रहा है पर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो क्या भैया आपकी मौत से ख़त्म हो जाएगा या फिर ये आपके बीवी बच्चे पर आ जाएगा, और क्या कर्ज से आपकी रूह को मौत के बाद सुकून मिल पाएगा? क्या करूं बहन, मैं थक गया हूं, हर बार नई कोशिश और हार का सामना। अब तो ससुराल वालों का भी कर्ज हो रहा है। तभी रुखसार की ज़ुबान से निकल गया, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी रुखसार, भाभी चौंक कर बोली। नहीं मालूम भाभी, पर अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता दिखाएगा। दरअसल आप लोगों के घर छोड़कर आने के बाद से लाडले की तनख्वाह एक बार भी नहीं आई है, सब टेंशन में है। लाडले कह रहा था, भैया की दुआ की बरकत से मुझे मेरी पसंद की कंपनी मिली और भैया घर छोड़कर चले गए। शायद ये सब इसी लिए हो रहा है, किस मुँह से भैया से मिलूँ। भैया अब बस दुआ कीजिए, कहते हुए रुखसार भाई ऐसे लिपट गई और रोने लगी। भैया ने रुखसार के सर पर हाथ फेरते हुए उसे जाने को कहा, घर जाओ वरना अब्बू नाराज होंगे। जी भैया मैं जाती हूँ, पर आप वादा कीजिए कोई टेंशन नहीं लेंगे, अपना और सबका ख्याल रखेंगे। मैं हूँ ना, रुखसार की आँख खुल गई और वो भागते हुए लाडले के कमरे में गई, जैसे कोई रास्ता उसे ख्वाब में मिल गया था। भाई एक बात करनी है। जी आपी, तुम्हारी सैलरी आई? लाडले का चेहरा उतर गया। आ जाएगी, तुम एक बात मानोगी मेरी? हाँ हाँ बोलो ना। लाडले उस कंपनी को छोड़ना भी नहीं चाहता था। देखो भाई, बहुत मुश्किल से तुम्हारी जॉब लगी, पर पहले माँ की सैलरी पर तुमने सबको मिठाई तो खिलाई और सबसे अहम काम करना भूल गए। लाडले चौंक कर, क्या काम? अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च न कर पाए। लाडले शर्मिंदगी के साथ अचानक बोल पड़ा, या अल्लाह, मेरी सैलरी आ जाए और मेरी जॉब रह जाए, मैं हर माह तेरी राह में अपनी कमाई का सदका दूंगा। अल्लाह ने सब के अहद को कबूल कर लिया और अगले ही दिन उसकी सैलरी आ गई। लाडले ने सैलरी का सदका निकाल कर रुखसार के हाथ में देते हुए कहा, मुझे एक दो दिन में ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है, तुम उसे देना जो बहुत ज़रूरतमंद है, और हर माह मुझसे याद से ये सदका ले लेना। बहन मैं अगर भूल भी जाऊँ तो तुम मुझे मेरे अल्लाह से किए हुए अहद को निभाने में मेरी मदद करना। रुखसार ने खामोशी से पैसे को रख लिया और ये कहकर के लाडले को रुखसत किया कि तुम टेंशन न लेना, इंशाअल्लाह ये पैसा उस इंसान के पास जाएगा जो सच में बहुत ज़रूरतमंद है। रुखसार दूसरे ही दिन भैया के पास पहुँची और कहा, ये कुछ पैसे हैं, आप चाहें तो इसे खर्च कर दीजिए, ये चाहे तो अपने कर्ज को अदा करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए, मर्जी आपकी है। रुखसार ये पैसे तुमने कहाँ से लाए? भाई और भाभी दोनों एक साथ बोल पड़े, ये पैसे अल्लाह ने भेजे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मैं अल्लाह से आपकी मदद

0: पर हमारे घर में सच्ची ईद हुई। भैया बहुत तो नहीं पर बहुत कामयाब हो चुके थे। अपनी हिम्मत के साथ और अब्बू का सारा कर्ज उतार कर वो वापिस घर आए। लाडले आज भी अपने अहद को निभाता है और मैं भैया जैसे कर्ज में डूबे हुए भाई को ढूंढती हूँ और उनकी मदद करने की हमारी कोशिश आज भी जारी है। मैं समझ चुकी हूँ कर्ज एक मर्ज है जिसे ख़त्म करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी और का कर्ज मर्ज की तरह न पड़े, बस यही कोशिश है।
1: सामीन आप सुन रहे थे अफसाना, मौजू था कर्ज एक मर्ज। अफसाना निगार थे जनाब सैयद असगर हुसैन। सामीन अगली पेशकश में आप सुनेंगे कलाम शायर के तहत जनाब अयाजुद्दीन असर फरीदी से उनका ये कलाम।
2: हजरात, गजल का मतलब चनशीर अर्ज कर रहा हूं। मतलब क्या है कि काम करना है कुछ भी नहीं कहना है आज, काम करना है कुछ भी नहीं कहना है आज, जिंदगी तुझसे बगावत नहीं करना है आज, काम करना है कुछ भी नहीं कहना है आज, जिंदगी तुझसे बगावत नहीं करना है आज। और चांद तारों की हकीकत से सभी वाकिफ हैं, चांद तारों की हकीकत से सभी वाकिफ हैं, तस्करा इनका भी हमको नहीं करना है आज। चांद तारों की हकीकत से सभी वाकिफ हैं, तज़किरा इनका भी हमको नहीं करना है आज। और ये शेर देखिए कि सब के सब हिरसो हवस के यहाँ शैदाई हैं, सब के सब हिरसो हवस के यहाँ शैदाई हैं, कुछ नहीं ऐसा है सब तुरफा तमाशा है आज। सब के सब हिरसो हवस के यहाँ शैदाई हैं, कुछ नहीं ऐसा है सब तुरफा तमाशा है आज। और साथ तुम भी चलो, तुम भी चलो और तुम भी चलो, साथ तुम भी चलो, तुम भी चलो और तुम भी चलो, आग नफरत की लगी है जो बुझाना है आज। साथ तुम भी चलो, तुम भी चलो और तुम भी चलो, आग नफरत की लगी है जो बुझाना है आज। ये शेर भी समाज फरमाइए कि ये तेरी फितना गरी तुझको नहीं झेलेगी, ये तेरी फितना गरी तुझको नहीं झेलेगी, जो हकीकत है उसको ही समझना है आज। ये तेरी फितना गरी तुझको नहीं झेलेगी, जो हकीकत है उसको भी समझना है आज। और गज़ल का आखिरी शेर समाप्त फरमाइए कि हम तो आए हैं मिलने के लिए तुमसे यहाँ, हम तो आए हैं मिलने के लिए तुमसे यहाँ, हम तो आए हैं मिलने के लिए तुमसे यहाँ, कोई शिकवा न शिकायत हमें करना है आज। हम तो आए हैं मिलने के लिए तुमसे यहाँ, जो हकीकत है उसको भी समझना है आज। और गज़ल का मक्ता समाज फरमाइए कि ये भी शेर देख लीजिए हजरत कि हम तो आए हैं मिलने के लिए तुमसे यहाँ, कोई शिकवा न शिकायत हमें करना है आज। और गज़ल का मक्ता समाज फरमाइए कि रोटियाँ खाने को मिल जाती हैं हर शाम असर, रोटियाँ खाने को मिल जाती हैं हर शाम असर, कल जो होता था उससे तो अच्छा है आज। रोटियां खाने को मिल जाती हैं हर शाम असर, कल जो होता था उससे तो अच्छा है आज। और दूसरी गज़ल का मतलब चनशेर समाज फरमाइए, खाली मतलब ही हजरत मतलब समाज फरमाइए कि ये सर्द रात ये दरिया दिली से मतलब है, ये सर्द रात ये दरिया दिली से मतलब है, उम्र के जैसी हमें रहबरी से मतलब है, ये सर्द रात ये दरिया दिली से मतलब है, उम्र के जैसी हमें रहबरी से मतलब है। ये सर्द

0: आत्य ये दरिया दिली से मतलब है, उम्र के जैसी हमें रहबरी से मतलब है। और उसने मतलब समाज फरमाइए कि जो काम आए सभी के उसी से मतलब है। जो काम आए सभी के, जो काम आए सभी के उसी से मतलब है। हमें तो चांद नहीं चांदनी से मतलब है। जो काम आए सभी के उसी से मतलब है। हमें तो चांद नहीं चांदनी से मतलब है। तेरी वफा न तेरी बेरुखी से मतलब है। तेरी वफा न तेरी बेरुखी से मतलब है। तेरी वफा न तेरी बेरुखी से मतलब है। नसीब में जो मेरे है उसी से मतलब है। तेरी वफा न तेरी बेरुखी से मतलब है। नसीब में जो मेरी है उसी से मतलब है। और किसी से क्या है शिकायत किसी से मतलब है। किसी से क्या है शिकायत किसी से मतलब है। हमें तो उनकी फ़कत सादगी से मतलब है। किसी से क्या है शिकायत किसी से मतलब है। हमें तो उनकी फ़कत सादगी से मतलब है। और किसी की आँख को तेरी नमी से मतलब है। ये भी मतलब समाज फरमाइए हज़रात कि किसी की आँखों को तेरी नमी से मतलब है। हमें तो आज भी तेरी खुशी से मतलब है। किसी की आँखों को तेरी नमी से मतलब है। हमें तो आज भी तेरी खुशी से मतलब है। और गज़ल का आखिरी शेर समाप्त फरमाइए कि कहाँ किसी भी उसे आदमी से मतलब है। कहाँ किसी भी उसे आदमी से मतलब है। उसे तो अपनी यहाँ बर्तरी से मतलब है। कहाँ किसी भी उसे आदमी से मतलब है। उसे तो अपनी यहाँ बरतरी से मतलब है। और गज़ल का मक्ता समाज फरमाइए कि जो खुश मिजाज है उसकी खुशी से मतलब है। जो खुश मिजाज है उसकी खुशी से मतलब है। असर फरीदी की जिंदा दिली से मतलब है। जो खुश मिजाज है उसकी खुशी से मतलब है। असर फरीदी की जिंदा दिली से मतलब है। और ये सर्द रात ये दरिया दिली से मतलब है। उम्र के जैसी हमें रहबरी से मतलब है। जो काम आए सभी के उसी से मतलब है। हमें तो चांद नहीं चांदनी से मतलब है। और गज़ल का कुछ शेर समाप्त फरमाइए कि मोहब्बतों की हम अपनी ज़बान भूल गए। मोहब्बतों की हम अपनी ज़बान भूल गए। कहाँ से आए थे वो ख़ानदान भूल गए। मोहब्बतों की हम अपनी ज़बान भूल गए। कहाँ से आए थे वो ख़ानदान भूल गए। और हमें तो करना था अपना मुहासबा लेकिन हमें तो करना था अपना मुहासबा लेकिन ज़मीन पे पैर रखा आसमान भूल गए। हमें तो करना था अपना मुहासबा लेकिन ज़मीन पे पैर रखा आसमान भूल गए। और हवस की रौ में तो हम बह गए यहाँ ऐसे। हवस की रौ में तो हम बह गए यहाँ ऐसे। जो थी फ़कीरी में अपनी वो शान भूल गए। हवस की रौ में तो हम बह गए यहाँ ऐसे। जो थी फ़कीरी में अपनी वो शान भूल गए। और सिमट के रह गए हम लोग बंद कमरे में। सिमट के रह गए हम लोग बंद कमरे में। दलान पान और हम पानदान भूल गए। सिमट के रह गए हम लोग बंद कमरे में। दलान पान और हम पानदान भूल गए। मोहब्बतों की हम अपनी ज़बान भूल गए। कहाँ से आए थे वो ख़ानदान भूल गए।
1: सामिन कलाम शायर के तहत अपना कलाम पेश कर रहे थे जनाब अयाज़ुद्दीन असर फरीदी। अब चलते हैं बज़्म मौसीक़ी की जानिब। और बज़्म मौसीक़ी में पेश

हजर तेना से गरामी दीदा ओ दिल फरशेरा हजर तेना से गरामी

0: दो के समझावेंगे क्या गर किया नासे ने हमको कैद।
1: अच्छा यूं सही,

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: प्रेम रोग। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में। नरेंद्र शर्मा के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे एक दूजे के लिए, फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आरजू में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे शकील बदायूनी का लिखा गाना, जिसे हमने लिया था फिल्म गंगा जमुना से। आवाज मोहम्मद रफी की, संगीत निर्देशन नौशाद अली का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म आरजू में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

जान तेरे नाम। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

माशूक फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

सोनू निगम, अनुराधा श्रीराम और सुजाता को अभी आप सुन रहे थे फिल्म ताल में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे हैं प्रातःकालीन सभा। सभा को जारी रखते हुए हम आपको सुनवाते हैं उप शास्त्रीय संगीत में गायन राग सुहा में। कलाकार हैं ढुंडुताई कुलकर्णी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत में गायन राग सुहा में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत त खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत त हमरा लोकनि खायब की?
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर।
2: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाना।

0: समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
0: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

0: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
1: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
1: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
1: श्रोता उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
1: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
1: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
2: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
1: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया और जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
2: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
1: श्रोताओं आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही

0: बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
1: जी
0: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
1: लब्ध प्रतिष्ठ।
0: इसका अर्थ है
1: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
0: तो श्रोताओ, अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
0: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली बूंद।
1: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म

0: हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर

0: इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
1: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
0: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
1: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
0: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: चलो चलो चलो
5: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
6: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर
8: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
8: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
8: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
7: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में

0: पास्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी, और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई है सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान

0: मन को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
2: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
2: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
3: आप,
2: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
2: मेरा अच्छा, बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट इनसेंसिटिव इंडिविजुअल।

0: individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
1: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
1: नमस्कार.
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया. अब सुनिए कुछ नए तराने फिल्म संगीत के अंतर्गत.

बम बर्स फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे विशाल मिश्रा और पलक मुच्छल। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

तेजस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे अरिजीत सिंह और शाश्वत सचदेव। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया जा रहा है। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम।

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आवाजें थी राघव चेतन और सचिन जिगर की। अगला गीत हम आपको सुनाते हैं फिल्म गदर 2 से। गायक कलाकार हैं विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और सिनाज अख्तर।

भूल भुलैया 3 इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत, आवाज सोनू निगम की थी। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तुमको मेरी कसम से। आवाजें हैं नीति मोहन और पापोन की।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुनिए बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार श्रोता बहनों, कार्यक्रम नारी संसार में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं रजनी, आपकी रेडियो सखी। बहनों, हमेशा की तरह आज भी हम नए नए विषयों के साथ उपस्थित हैं, और सबसे पहले आज हम हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, आत्मनिर्भर महिला, समृद्ध परिवार पर बातें करेंगे। कार्यक्रम के बीच बीच में आपको कुछ नए पुराने फिल्मी नगमा भी सुनवाएंगे, और अंत में खास टिप्स होगी, खास बातचीत आपके लिए। और तो कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ, और अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार का आनंद लेते रहिए। बहनों, नारी संसार एक ऐसा कार्यक्रम है जो महिलाओं के ज्ञान, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण को समर्पित है। आज हम सबसे पहले हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के विषय पर बात कर रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, हर महिला में कोई न कोई हुनर अवश्य होता है। किसी को सिलाई आती है, किसी को कढ़ाई, कोई स्वादिष्ट अचार और पापड़ बनाती हैं, तो कोई सुंदर पेंटिंग या हस्तशिल्पी की वस्तुएं तैयार करती हैं। यही छोटे छोटे हुनर यदि सही दिशा और अवसर पाते हैं तो वे रोजगार और आत्मविश्वास का मधुर आधार बन जाते हैं। भारत में सदियों से हस्तशिल्पी और कुटीर उद्योग हमारी पहचान रही है। मधुबनी पेंटिंग हो, चिकनकारी, बांस और जूट का उत्पाद, बालू पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन और हाथ से बुने कपड़े और उनके पारंपरिक कलाएं आज भी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। आज गांवों और कस्बों की हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अचार, पापड़, मसाले, अगरबत्ती, मोमबत्ती, सिलाई कढ़ाई और हस्तनिर्मित वस्तुएं तैयार कर रही हैं। कहीं जनेऊ भी तैयार कर रही हैं, तकली काट रही हैं। वे सब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार की आय को बढ़ा भी रही हैं, अपने परिवार को सशक्त कर रही हैं। तो प्रिय बहनों, यदि आपके पास भी कोई हुनर है तो उसे केवल शौक तक सीमित मत रखिए, उसे अपनी पहचान और आय का साधन बनाइए। इससे आपकी हौसला और भी बुलंद होगी और आपकी पहचान बढ़ेगी, सामाजिकता आएगी। आप सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों से घर बैठे ही अपने उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। बस थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी चौचकता होनी चाहिए और अपने कार्य के प्रति लगन और समर्पित भावना होनी चाहिए। सरकार और विभिन्न संस्थाएं भी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। महिला सशक्तिकरण का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। बस आवश्यकता है लगन की, और उस लगन के आधार पर आगे बढ़ने की, सफलता के मार्ग में अग्रसर होने की आवश्यकता। इन योजनाओं की जानकारी लेने और उनके लाभ उठाने की है। याद रखिए, आत्मनिर्भर महिला केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं बदलती, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी बेहतर बनाती है। वह समाज के लिए भी प्रेरणा बनती है और अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने का साहस देती हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आप भी आइडियल बन सकते हैं, अपनी कला को आगे बढ़ा सकती हैं और

लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। तो आइए आज हम सब संकल्प लें कि आप अपने हुनर पहचान को पहचानेंगे, उसे निखारेंगे, जो अपने अंदर हुनर है उसको बाहर निकालेंगे और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं। बस आप आगे बढ़ने की बात है, बस मन बनाने की बात है। तो बहनों, आगे भी हमारी बातचीत होती रहेगी। फिलहाल चलते हैं मधुर संगीत की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम बगीचा में पिरोया हुआ ये प्यारा सा नगमा।

बहनों, अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रही थी कार्यक्रम नारी संसार के अंतर्गत। बहनों, पेड़ पौधा हमारे अच्छे और सच्चे वाले दोस्त होते हैं, और बागवानी करना एक अच्छी शौक है, ये सभी में पनपना चाहिए और सभी को बागवानी का शौक होना चाहिए, और बागवानी से बच्चों को भी जोड़ना चाहिए। प्रकृति से इसे जुड़ाव बढ़ता है और वातावरण स्वच्छ बनता है। और अगर जिनके पास, जैसे गांव में बहुत सारे जगह होते हैं, वहाँ पे अगल बगल या खेत खलिहान में भी हम बागवानी कर सकते हैं, लेकिन प्रायः शहरों में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो हम अपने घर में ही ये बालकनी में, छत पे, गमला में या फिर बैग में, कहीं भी बागवानी का शौक अपना पूरा कर सकते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं। और किचन गार्डन कैसे बनाएं और इसके महत्व के बारे में आइए सुनते हैं ये वार्ता मेरे स्वयं के द्वारा।

0: नमस्कार श्रोता बहनों, नारी संसार के एक छोटी मुलाकात अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रजनी, आपकी रेडियो सखी। बहनों, आज हम बात करेंगे किचन गार्डन के बारे में। किचन गार्डन अर्थात घर के आसपास उपलब्ध छोटी सी जगह में सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगाना। आज के समय में बढ़ते प्रदूषण और रासायनिक खादों के अधिक उपयोग के कारण किचन गार्डन का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। यह न केवल हमें ताजी और पौष्टिक सब्जियां देता है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा भी करता है। किचन गार्डन बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनें जहां प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो। यदि घर में खुली जमीन नहीं है तो गमलों में ग्रो बैग या पुराने डब्बों का भी उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी में गोबर की खाद और जैविक कंपोस्ट मिलाकर उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसके बाद मौसम के अनुसार टमाटर, मिर्च, धनिया, पालक, मेथी, लौकी, बैंगन, भिंडी जैसी सब्जियों के बीज या पौधे लगाए जा सकते हैं। नियमित रूप से सिंचाई करें, खरपतवार हटाएं और जैविक खाद का उपयोग करें। आजकल चलन में भी है ना जो ऑर्गेनिक, तो आप आसानी से घर में ही ऑर्गेनिक सब्जियां और फल को उगा सकते हैं। किचन गार्डन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि परिवार को बिना रासायनिक दवाओं वाली ताजी सब्जियां मिलती है। इससे बाजार में निर्भरता कम होती है और घरेलू खर्चों में भी बचत होती है। बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम भी बढ़ता है, यानी कि बच्चों को भी इस कार्य से जोड़ें, उन्हें सिखाएं, प्रकृति से लगाव बढ़ेगा और उन्हें पौधों की देखभाल का व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा। इसके साथ ही घर का वातावरण हरा भरा और स्वच्छ बना रहेगा। यदि हर परिवार अपने घर में छोटा सा किचन गार्डन विकसित करे तो स्वस्थ जीवन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सकता है। वास्तव में किचन गार्डन केवल सब्जियां उगाने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वस्थ, आत्मनिर्भर और प्रकृति से जुड़े जीवन की एक सुंदर शुरुआत है। तो आइए आज ही संकल्प लें कि अपने घर में उपलब्ध छोटी सी जगह का उपयोग कर एक सुंदर किचन गार्डन तैयार करेंगे। यह हरियाली हमारे घर में स्वास्थ्य, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। मन सुकून से भरा रहेगा। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे नारी संसार के अगले किसी अंक में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और प्रकृति से जुड़े। नमस्कार।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक

0: स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बहनों, इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम में पुनः आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिवार में संवाद का महत्व के विषय पर। बहनों, परिवार केवल एक साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ का दूसरा नाम है परिवार। इन सभी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संवाद का ही होता है। खुलकर और सम्मानपूर्वक की गई बातचीत परिवार को जोड़ती है, जबकि संवाद की कमी गलतफहमियों और दूरियों को जन्म देती है। और किसी से कोई मनमुटाव हुआ तो खुलकर बातें करें, उनसे अपनी राय रखें और उनकी भी बातें सुने। अगर नहीं सुनिएगा, अगर बातचीत बंद करिएगा, तो इससे गलतफहमियां बढ़ेगी और रिश्तों में दूरियां आएगी। तो इसको आप हल करने के लिए खुलकर बातें करें। आज की व्यस्त जीवन शैली में परिवार के सदस्य अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ बैठकर बात करने का समय कम होता जा रहा है। और मोबाइल, टेलीविज़न और इंटरनेट ने भी आमने सामने की बातचीत को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। अगर घर में सभी सदस्य हैं भी तो सब अपने अपने मोबाइल पे या टीवी पे बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं हो रही है और कई दिनों तक ऐसा चलता है। कितने घरों में ऐसा देखा गया है। इससे जो आपसी समरसता है वो कमती है और रिश्ते में जो मिठास रहती है वो बातचीत करने से ही आती है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बातचीत करना तो ज़रूरी होता है, और अगर बातचीत नहीं करिएगा इसका असर परिवार के रिश्तों पर भी दिखाई देने लगता है। परिवार में नियमित संवाद होने से प्रत्येक सदस्य अपनी भावनाएं, समस्याएं और विचार खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। इससे आपसी विश्वास बढ़ता है और छोटी छोटी समस्याएं समय रहते सुलझ जाती हैं। बच्चों के साथ संवाद उन्हें अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन देता है। वहीं बुजुर्गों से बातचीत उन्हें अपनापन और सम्मान का एहसास कराती है, उन्हें अकेलापन से मुक्ति दिलाती है और उन्हें लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मैं और मेरे साथ हैं, तो उन्हें जीने की ताकत मिलती है, हौसला मिलती है। तो अपने बुजुर्गों के साथ भी टाइम बिताइए और बच्चों के मन की बातें समझने की कोशिश करिए। स्कूल में क्या हो रहा है, खेल के मैदान में किसी से अनबन तो नहीं हुई है, या कोई ऐसा जो उन्हें गलत राह नहीं दिखा रहा है, ये सब संवाद करने से ही आपको पता लगेगा। तो संवाद की बहुत ताकत होती है। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, ये तो हम सभी समझते हैं। वे अपने व्यवहार और संवाद से घर का वातावरण प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बना सकती है। यदि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बातचीत धैर्य से सुने और सम्मानपूर्वक अपनी बात रखें तो मिलकर निर्णय लें, तो परिवार में सुख और शांति और एकता बनी रहती है और परिवार खुशहाली की पटरी पर धराधर आगे बढ़ती है। हमें प्रतिदिन कुछ समय अपने परिवार के साथ बैठकर बात करने की आदत बनानी चाहिए। साथ भोजन करना, बच्चों के साथ बातें करना, उनकी बातें सुनना, बुजुर्गों के हालचाल पूछना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना रिश्तों की को और भी मजबूत बनाता है और भी प्यारा बनाता है। निस्संदेह संवाद ही वह सेतु है जो परिवार को जोड़ कर रखता है। जहाँ खुला संवाद होता है वहाँ विश्वास, प्रेम और खुशियाँ भी बनी रहती हैं। इसलिए एक सुखी और मजबूत परिवार के लिए संवाद को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है। प्रिय श्रोताओं, दिन में केवल 20 से 30 मिनट का पारिवारिक संवाद भी रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए आज हम सब संकल्प लें कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हम अपने परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकालेंगे, क्योंकि जहां संवाद होता है वहां परिवार सचमुच में खुशहाल होता है।

तो ये तो थी हमारी छोटी सी बातचीत पारिवारिक संवाद के विषय पर। आगे हम खास टिप्स की बातें करेंगे, जिसमें किचन टिप्स आज हम बताने वाले हैं। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

0: बहनों, फिल्म गाइड का ये प्यारा सा नगमा सुन रही थी। आइए चलते चलते कुछ खास टिप्स की बातें हो जाए। आज खास टिप्स में हम किचन टिप्स बताने वाले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगी। हरी धनिया और पुदीने को धोकर अच्छी तरह से सुखाकर एयरटाइट डब्बे में रखें। वे अधिक दिनों तक ताजे और खुशबू से भरपूर रहेंगे। इसी तरह चावल पकाते समय कुछ बूंदे नींबू के रस डालने से चावल खिला खिला बनता है, और या फिर चावल पकाते समय दो तेजपत्ता डाल दें तो चावल खिला खिला बनेगा। चावल में कीड़े ना लगे इसके लिए डिब्बे में 4-5 तेजपत्ते रखने से भी चावल में कीड़े नहीं लगते हैं। तो बहनों, आज का समय सीमा समाप्त होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम के जरिए हम मिलते रहेंगे इसी वायदे के साथ। अपनी रेडियो सखी रजनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे बानो को संबोधित कार्यक्रम नारी।

0: संसार अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही 8-2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और बी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत।

रोजगार सूचना आप सुना करते हैं दोपहर 2:10 से। 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। लोकगीत आप सुनेंगे 2:03। सांधकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे तरुण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण मिथिला संध्या 5:00। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं संध्या 6:10 पर। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होता है 6:30 से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी का समय होगा संध्या 7:00।

7:52 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का समय होगा 8:15 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 9:30 पर। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे 10:00। और फिल्म संगीत का एक बार फिर से आनंद आप लेंगे 10:30 से। ये था आज की प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति की। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन EIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम अपने रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आज मशहूर गायक सोनू निगम जी का जन्मदिन है। जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई आकाशवाणी परिवार की ओर से। आइए पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में, जिसे लिया है हमने फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से।

1942 ए लव स्टोरी। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ में। गीत के बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत था आर डी बर्मन का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। अलका याग्निक की आवाज़ में गीत समीर का है और संगीत है नदीम शर्वन का।

वो तेरा नाम था। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे उदित नारायण और अलका याग्निक। गीत निदा फाजली के थे और इस गीत को संगीत से संवारा था सुमित चोपड़ा ने। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आन से अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत समीर का है और संगीत है अनु मलिक का।

अभिजीत और अनुराधा पडवाल के युगल स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था अनु मलिक का, जिसे लिया था हमने फिल्म आन से। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आशिकी से, अनुराधा पडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत समीर का है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 20.1% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। सभी मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ ही जिला पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। फर्जी पहचान पत्र के माध्यम से वोट डालने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध मतदाताओं की पहचान पत्र का QR कोड स्कैन कर ECI के ऐप पर उपलब्ध डाटाबेस से मिलान किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक वीडियो जारी कर मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में निर्भय होकर भाग लेने की अपील की है। मतदाताओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया गया है, जिस पर निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी जा सकती है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सांसद रविशंकर प्रसाद, विवेक ठाकुर, पूर्व सांसद CP ठाकुर

0: सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, खाद्य उपभोक्ता मंत्री अशोक चौधरी और विधायक श्याम रजक ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर मत डाला। मतदान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने मतदाताओं से घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बांकीपुर की जनता से बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेने की अपील की है। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि पहले की सभी सरकारों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं। यह पहली सरकार है जो एंटी पेपर लीक कानून बनाने की पहल की है। एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के व्यवहार और भाषा की उन्होंने आलोचना की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के कारण पटना और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। राज्य के विभिन्न भागों में भी मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार के मनिहारी में सबसे अधिक 45.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीवान समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के कारण गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में विभिन्न स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर में बढ़ोतरी हुई है, जबकि पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में सौली घाट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने के दौरान 4 सोमवार पड़ेंगे। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ और राजधानी पटना के विभिन्न शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे कैमूर संवाददाता ने बताया है कि मां मुंडेश्वरी मंदिर में चतुर्मुख महादेव के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वैभव सूर्यवंशी को आगामी दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ईस्ट जोन टीम का उप कप्तान चुना गया है। इतनी कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी का ईस्ट जोन टीम का उप कप्तान बनना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए गर्व की बात है। दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में खेला जाएगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने इस उपलब्धि के लिए वैभव सूर्यवंशी को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं रोजगार सूचना। लेखा परीक्षक एवं सहायक कुल पद 1829। आवेदन शुरू होने की तिथि है 14/7/2026 से और आवेदन की अंतिम तिथि है 3/8/2026 तक। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल, अधिकतम उम्र सीमा 40 साल। ऑफिशियल वेबसाइट है upssc.gov.in।

0: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एसओ का पद है, कुल पद 395 है। आवेदन शुरू होने की तिथि 21/7/2026 है और अंतिम तिथि है 10/8/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल, अधिकतम उम्र सीमा 50 साल। ऑफिशियल वेबसाइट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .bank.in।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
2: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोप्राइटरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी

0: material by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for the conduct of public examination.
1: लोक सभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर

0: 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन

0: अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखा भाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावण मेला शुरू हो गया है।
6: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवर ब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
7: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा

0: लंदन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज डेल्टा मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। अमरीका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोवाट्स पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आराधना से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है SD बर्मन का।

0: अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत इंदिवर का है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, जिसे लिया है हमने फिल्म सच्चा झूठा से।
1: यूं ही तुम

आरजू फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आवाज मोहम्मद रफी की थी, गीत हसरत जयपुरी की और संगीत था शंकर जयकिशन का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यू जॉन EIR ऐप। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत खयाम का है।

थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीत था खयाम का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ताना से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत आनंद पक्षी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुनिए लोकगीत। पहला लोकगीत हम आपको सुनवाते हैं ममता देवी के स्वर में।

और सहेलियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। अगला लोकगीत हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है शारदा सिन्हा का।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीत, प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज़ॉन EIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा की सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं संध्या 5:00 सांध्यकालीन सभा के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
1: और डॉक्टर बुद्री ताती ने मां शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
0: और इसके अलावा उन्होंने गांव गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया, बहुत से नशा मुक्ति अभियान चलाए, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। बस्तर और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में काम करना आसान नहीं था और वहां पर उन्हें कई सारी धमकियों का और विरोध का सामना भी करना पड़ा था,
1: लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे लगभग 570 दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंची, वहां के लोगों का विश्वास जीता। डॉक्टर ताती अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती है और उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुद्री ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से

0: सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है।
0: अब एक संदेश सुनते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, संगीत सुन।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
0: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार

0: उस रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आरती
1: रूठी नहीं है बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे,
0: इसलिए नहीं बोल रहे थे रूठ गई
1: रूठे नहीं है, और क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि हाँ। चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा,
0: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए,
1: तेज नहीं चाहिए एकदम से भागना ही पड़ जाए, नहीं भैया बहुत हो गया चलो,
0: फिर फिसलने का डर भी है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो वे गिर गए तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत दुखदायक हो जाएगी,
1: पानी भर गया अगर और ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में और कुछ पैरों के नीचे आ गया तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो,
0: और उसमें ना हमारे चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं, और वो इतनी लाइट होती है ना कि

0: ये धस्ती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें, तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए। और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम, मौसम अच्छा है, और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई।
1: इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना। और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है ना। एक उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना, जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी, एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं, मतलब जो सूखी हुई डंडियां, जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं, जैसे
0: हरी हरी कोपले आ जाती है। और जैसे ना हम बाहर घूमने जब जाते हैं ना, तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है।
1: बिल्कुल, इतना अच्छा आंखों को लगता है ऐसा, दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है। और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना, तो सूखी धरती जो है वो मुस्कुराने लगती है कि चलो
0: हम बिल्कुल हमारी तरह।
1: बिल्कुल, और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं, और नदियां, झरने और पहाड़ जो है वो अपनी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं। ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
0: और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता। आरती, बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है। और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती है।
1: सच में, अब हम अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना, तो या ट्रेन से भी जा रहे हैं, तो ये जो दृश्य होते हैं ना ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए हो धरती पे ना।
0: बहुत सुंदर
1: लगता है। और यही कारण है कि मानसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी। बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद सभी तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो।
0: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती,
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम, और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहां पे कभी कभी ऐसी जगहों पे, जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
0: बिल्कुल रखना जरूरी है, अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
1: और जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती ना वो तो बहुत जरूरी है।
0: और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरनियां, तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है।
1: बिल्कुल,
0: भले ही आज रील ना बन पाए

0: उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है, पर
1: बाद में
0: हमारे
1: बना लीजिए अगली बार।
0: हाँ, क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है।
1: बिल्कुल। और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
0: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाएं, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिए, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोग अभी बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
0: और सबसे जरूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
1: बिल्कुल
0: होता है।
1: बहुत सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मॉनसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है। क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, प्रकृति जो प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी गई, जारी की गई है, तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ सुनाली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई। मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही। क्या बात है,
0: बिल्कुल यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नजारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियां, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पर भी ध्यान रखिए, जहां पर आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर, मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है। और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
0: ये तो है। और एक हमारे साथी जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए हैं तो वो भी होटल में रुके हुए, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
1: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है, लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद, मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां, हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि अच्छी पकड़ वाले स्किड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताजा भोजन खाएं, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की
0: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाएं क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए। बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई, इन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
1: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान

0: ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना
1: बिल्कुल,
0: चाहिए, उसे हमें बहुत सावधानी से उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए।
1: हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी तो होती ही है, साथ में परिवार की या जो भी लोग हमारे साथ में गए हैं, इतने सारे लोग गए हुए हैं, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सके, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए।
0: और सबसे जरूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती, एक गाना सुन
1: गीत सुन लेते हैं,
0: सुनते हैं गीत।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना
1: एक
0: सोनाली?
1: हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है, ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, एक 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका। मैंने पलट कर देखा तो बोला, चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, पर मन में विचारा है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं।
0: बच्चे वही
1: बहुत सही बात लिखी है कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं। तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी होती है उसी में थूकना है, और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत जरूरी है। थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे साथी जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं। मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहां तहां थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज

0: होती है जिसे वो आपके मुंह में स्प्रे कर देते हैं, जिसे आपके मुंह में सूजन हो जाती है और आपका मुंह सूज जाता है, यही सजा दी जाती है। तो ये इस तरीके की चीजें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही हैं इस तरीके की चीज, लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है तो वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझिए सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है। तो ये इस तरीके की चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे
1: ही अपने घर के बाहर भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना लग जाता है।
0: अरे
1: तो ये तो बहुत सही है।
0: इस तरीके की जब सजा मिलती है या इस तरह की चीजें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए ना करें। तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
0: एक साथी लिखते हैं कि अपने अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज को नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पे चल रहे हैं लोग उनपे भी कभी कभी उनके कपड़ों पे गिर जाता है कभी कभी, इस तरह से तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं करना।
1: कई बार जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं पर जरूरी नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते हैं, तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं, गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है कि हवा से जो जीवाणु है कीटाणु है वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा कहना ही चाहिए।
0: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है, जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है, तो ऐसी आदतें न केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूं, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है। और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है ये तो लोगों को डराने के लिए एक आदत लगाने के लिए दंड है पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो सड्डा है वहां पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है, और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली दोनों हाथों से उसको बना रहे थे तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपए का दंड किया का जुर्माना भी लगाया और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है तो इस तरीके की चीजें वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: और अब गीत सुन
0: लेते हैं।

0: हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना। तो हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल की छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखिए अपने हाथ को, और वहां पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज लगा लीजिए, ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम और डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियां सट जाती हैं या पकौड़ियां तलते समय उंगलियां तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ में अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है, बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी, जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए, हो सके तो अगर ज्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।
0: ज्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
1: बिल्कुल
0: तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं
1: जी।
0: और छोटी मोटी चीजों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखती है कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज तरह की कोई चीज आप लगा सकते हैं, और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह है इनको काट के लगा सकते हैं।
1: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं, पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है, उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना जरूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है, और उसके बाद में साफ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ ना लगाए, और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
1: और आप क्या करें,
0: ये गीत सुनते
1: हैं। सुनते हैं गीत।
2: आयले चुनमुन चुनमुन

0: तो आरती, सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान बोल रहे हैं। सर
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है बड़ोदिया बल्लर और जिला लगता है सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 30 किलोमीटर का, दूर दूरी पे है।
0: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ हुई थी सर बारिश।
0: अपने गाँव में खेती कहाँ होते हैं?
1: सर खेती अपने यहाँ नहीं होती है, थोड़ा इनकी
0: नदी अद्दी कोई
1: नदी नहीं दिख रही यहाँ पे सर।
0: तलाव
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
0: तलाव बह थे कोई
1: नहीं सर? तलाव है तो सर मैं अपने गांव में नहीं, पर दूर पे तलाव थोड़े यहाँ से।
0: हो बाकी का हालचाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
0: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना आज की मूवी का।
0: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जगह के पास।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा जी
1: सर, आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था सर, आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए
1: जी। मैं आज सुनाता हूँ

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी जी, ये मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती बम्बई मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे। हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कुसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरेंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइश आती है।

0: वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
1: लेकिन नाम एक ही है?
0: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरंगी में नहीं है सर।
1: अच्छा, तो बताइए क्या हालचाल है छत्तीसगढ़ के?
0: हाँ सर जी, हम लोग अब सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
1: अच्छा, तो अभी क्या गतिविधियाँ?
0: अभी धान का रोपाई का काम जारी है।
1: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़?
0: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़।
1: किस किस तरह के चावल उगाते हैं आप?
0: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी। हमारे यहाँ
1: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
0: हाँ सर जी।
1: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
1: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुँच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं सिमीपाल गोयल पहाड़गढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हालचाल है?
1: सर ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर?
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और

0: इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल। अच्छा। कर रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी है हमारी। आज तो आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: जो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में, तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए कितने सारे श्रोता फोन करते हैं लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: का नाम डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी।
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते, फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर मैं।
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी देंगे सर, अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागन सा रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: को डोर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अए ये नागन डसले तो क्या कहना है?

0: डर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना है।

0: तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
1: वो जाती है लेह लद्दाख की।
0: जी जी, आप गए हैं उस तरफ?
1: हाँ, मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख जाने के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी चाहिए?
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग एक दिन और एक रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है?
1: हाँ हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहाँ घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है?
1: हाँ, आज धूप भी है।
0: कश्मीर में बारिश का मौसम किन महीनों में होता है?
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हर महीने होता है,
1: बीच में होते हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहां से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूँ।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही एक मार्सी में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहाँ से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी।

0: सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
1: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
0: सर जी, मैं गायन सीखता हूँ।
1: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए, हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं आज अब?
0: सर मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ, और आवाज लता दीदी की है, और गाने के बोल हैं बैया ना धरो बलमा।
1: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
0: जी सर, एक वो गाना है ना, राग देश, मुझे याद है। अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ।
1: जरूर।
0: ये राग देश है। बादल रे उमड़ घुमड़ घन बरसे, बिजली चमक जिया डरात बादल रे। ये सब सीखा है।
1: वाह वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: कुमारिया मध्य प्रदेश से
1: जी बोलिए
0: पृथ्वीराज यादव।
1: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
0: जी जी, इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है।
1: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?
0: सर गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
1: अरे बाप रे, और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
0: जी, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
1: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
0: जी, टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं।
1: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना ना हो?
0: सर देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
1: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे किसी साथी को, तो आप तो उस इलाके के हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
0: सर नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी।
1: नवम्बर से फरवरी, और दिन का कौन सा वक्त?
0: दिन का वक्त वही सर 9 से 12।
1: अच्छा, 9 से 12 में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
0: सर उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
1: अच्छा, आपको सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
0: सर यहाँ तो सबसे अच्छा दस बांधवगढ़ का एरिया है सर, उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में, वो भी बहुत अच्छा है सर, और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
1: मोर? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं।
0: जी, प्रकृति का संदार है सर यहाँ।
1: और आपका काम क्या है भाई?
0: सर हमारा ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
1: उस इलाके में?
0: जी जी।
1: तो मोटर बाइक से घूमते हैं?
0: जी जी जी।
1: अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
0: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर, हमें सूचना ज्ञान मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी केंद्र शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी, तो यहीं से हम पले बढ़े हैं, और सबसे अच्छा रेडियो ही है, रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
0: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।
1: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम यानुस भाई
0: जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: हिलाल अहमद श्रीनगर से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं भाई आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो सर?
0: जी हम अच्छे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं जनाब?
1: हम यही शाल काम करते हैं।
0: ओके, तो मुझे फिर ये बताइए कि एक अच्छे पश्मीने की पहचान कैसे की जा सकती है?
1: अच्छी पश्मीने की पहचान, इसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें तो बहुत दाम मिलता है। बाहर कंट्री में भी वो जाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे, तो अच्छी तरीके से बनाते फिर हमें बहुत कीमत मिलता है।
0: बहुत शुक्रिया। मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पश्मीना है, कुछ बहुत भारी पश्मीने होते हैं और कुछ कम सर्दियों के लिए होते हैं, तो जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं वो किस तरह से पहचाने कि उनकी जरूरत का पश्मीना कौन सा है?
1: टूरिस्ट यहाँ आते सर, वो भी इससे खरीदे, यहाँ उनको भी वो बहुत पसंद है, लेकिन इसमें तो ईमानदारी की बात है। दरअसल जो भी ये भेजेगा तो वो सही होना चाहिए।
0: जी, और एक अच्छा पश्मीना शॉल बनाने में आपको कितना वक्त लगता है?
1: सर इसमें तो बहुत डिजाइन है आते हैं, इसमें मतलब जो इस पर वो नक्शा होता है ना, वो बहुत किस्म के होते हैं, उसमें मुख्तलिफ बड़े वाला छोटे वाले पुरमतन के आते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जो पुरमतन होता है ना, उसमें तकरीबन 4 महीने 3 महीने 5 महीने भी लगते हैं, तो जो उसके छोटे साइज वाले हैं उसमें 1 महीना भी लगता है, तो इसी तरीके से हम बनाते हैं।
0: जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने हम बताई। और अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कुमार सानू की आवाज में, फिल्म का नाम है साथी, जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने पास आ गए।
0: वाह क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: जिलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान से।
0: क्या बात है, क्या मौसम है वहाँ?
1: मौसम सुहाना है सर।
0: बारिश बारिश
1: है? बारिश हल्की हल्की हो रही है, तेज भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, औसत मिनिमम बारिश हो रही है।
0: क्या बात है, और बारिश के मौसम के मजे क्या हैं?
1: सर बहुत ही आनंद आता है बारिश का मौसम, सर से मुझे तो प्यारा लगता है।
0: तो झीलों की नगरी के लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए?
1: उदयपुर में तो बहुत सी जगह है पिकनिक मनाने के लिए। संडे रात तो बहुत भीड़ थी सभी जगह पर, आज पूरा न्यूज पेपर उसी से भरा हुआ है। इतनी भीड़ हुई थी सभी जगह पर, पिकनिक मनाने लोग गए थे।
0: अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: जी सर, पुराने फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त की श्री 420 गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
0: क्या
1: मालूम नहीं कहाँ है मंजिल।
0: ये बिल्कुल बारिश का आपने गाना चुन लिया है।
1: छतरी के नीचे दोनों भीगते हुए गाना गाते हैं।
0: तो बातों का सिलसिला रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम। दूसरी सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

0: श्रोताओं, स्वागत है हमारे युवा श्रोताओं के लिए या युवा श्रोताओं पर आधारित यह कार्यक्रम युवानी में। श्रोताओं, युवा किसी भी देश की रीढ़ माना जाता है। जिस देश में युवाओं की संख्या अधिक होती है, और सिर्फ संख्या अधिक होने से ही नहीं होता है, जिस देश में युवा स्वावलंबी होते हैं, हर एक युवा के हाथ में रोजगार होता है, हर एक युवा शिक्षित होते हैं, तो उस देश का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, चाहे वो विकास आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक, नैतिक, यानी सर्वांगीण विकास की बात करें तो युवाओं के सशक्तता पर निर्भर है। युवा सशक्त होंगे, स्वावलंबी होंगे, तो देश भी सशक्त होगा, स्वावलंबी होगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये गीत, ये मैथिली गीत।
1: हर

0: फाइनेंशियल भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच

अभी विज्ञापन से पूर्व सुन रहे थे अरविंद कुमार झा के स्वर में ये गीत हे हर हमड़ो किन दिय गहना। वास्तव में हर एक गृहिणी की अभिलाषा होती है कि हमारे पास भी गहने हो, और वो गहना तभी होगा जब युवा वर्ग स्वावलंबी होंगे, और युवाओं का स्वावलंबन हम पहले ही बता चुके हैं कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वावलंबन के साथ साथ युवा को अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए योगदान देना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात हर देश अपने युवा को या अपने युवा के अंदर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत देखना चाहता है। जब हमारे देश के युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना प्रमुखता से जागृत होगी, देशभक्ति जागृत होगी, तो देश की रक्षा में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम युवाओं को नैतिक रूप से भी शिक्षित होना चाहिए, यानी नैतिकता का जो ह्रास आज के समय में देखा जा रहा है, हम युवाओं का ही कर्तव्य है कि वर्तमान पीढ़ी से लेकर के और आने वाली पीढ़ी तक यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम किस तरह स्वयं में नैतिकता के भाव को भरें और अपने समाज में भी नैतिकता के दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। आइए सुनते हैं एक और मैथिली गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व कार्यक्रम युवानी में आप सुन रहे थे मैथिली गीत के अंतर्गत कजरी। कजरी वास्तव में जब वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंद झमाझम गिरती रहती है और खेतों में फसल लहलहाते रहते हैं, अपनी हरियाली से हरितिमा बिखेरता रहता है, तो किसान और गृहस्थ ये सभी झूम उठते हैं। युवा मन भी इसमें पीछे नहीं हटता।

और युवा मन की ही यह उद्गार था कि सखी हे बरसत बूंद झमाझम पहुँ नहीं आयल हे सजनी। वर्षा ऋतु वैसे तो जलवायु प्रदूषण के कारण अब तो बरसात देखने को मिलता ही नहीं श्रोताओं, नहीं तो वर्षा ऋतु में चारों तरफ जल ही जल नजर आता था, मेढ़क का टर टर और लगातार झमाझम वर्षा, लोग ऊब जाते थे वर्षा से। लेकिन वही समय है कि लोग जैसे तैसे खेती कर रहे हैं, खरीफ फसल का समय बीता जा रहा है, करने वाले किसान क्या करे, किसी तरह कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था के से वो खेती कर रहे हैं जो कि बहुत ही महंगी लागत लग रहा है उसमें, लेकिन देखा भी तो नहीं जाता खेत को पड़ा हुआ छोड़कर। यह सब कारण है जलवायु प्रदूषण का। और युवा श्रोताओं, अब जो आने वाला समय है वो आपकी मुट्ठी में है। आप सबसे पहला हम सब का कर्तव्य बनता है, उसमें युवाओं का जोरदार समर्थन और जोरदार आह्वान है कि हम सबसे पहले जलवायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में जो भी महत्वपूर्ण कदम हैं उनको उठाएं, क्योंकि जलवायु संतुलित रहेगी तभी हम अन्न उपजा सकते हैं, तभी हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम सही ढंग से जीवन यापन कर सकते हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अन्यथा जीवन जीना दुभर हो जाएगा, सांसें लेनी मुश्किल हो जाएगी, पानी ही नहीं रहेगा पीने के लिए, तो हम जिएंगे कैसे। दिनानुदिन वर्षा का अनुपात कम होता जा रहा है, भूमिगत जल का स्तर दिनानुदिन घटता चला जा रहा है, हम हैं कि चेतने को नाम नहीं लेते। तो अब श्रोताओं, अब युवाओं का ही, युवाओं के कंधे पर ही यह सारा भार है कि हम प्रकृति संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। आइए, मिथिला से संबंधित यह गीत ममता ठाकुर के स्वर में हम सुनते हैं, हे तिरहुत हे मिथिला ललाम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व ममता ठाकुर के स्वर में ये मिथिला गीत सुन रहे थे, हे तिरहुत, हे मिथिले ललाम, हे मातृभूमि, शत शत प्रणाम। हाँ श्रोताओं, मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जननी अर्थात माता और जन्मभूमि, इन जिस धरती पर हमने जन्म लिया है,

ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो युवा वर्ग से हमारा यही आग्रह है कि हम जीवन के चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, हम अपने स्वदेश से प्रेम करना ना छोड़ें, अपने स्वदेश के लिए मर मिटने का जज्बा हर हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी मातृभूमि सुरक्षित रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। जिस हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं होता है ना, साहित्यकार की एक उक्ति है जिसका भाव है कि वह हृदय हृदय नहीं, वह हृदय पत्थर है, और पत्थर में भावना नहीं होती। हम युवा हैं और युवा को भावनाहीन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भावना से ही संस्कार बनता है, भावना से ही हम आगे की ओर विकास की ओर अग्रसर होते हैं। विकास के साथ साथ भावना भी आवश्यक है। संवेदनहीनता जड़ता की निशानी होती है, इसलिए संवेदना तो चाहिए ही। हम संवेदनहीन होकर के हम स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो संवेदना भी आवश्यक है। देश तभी समुचित रूप से विकसित होगा जब हम में नैतिकता के गुण विकसित होंगे। नैतिकता आवश्यक है, केवल विकसित होते जाना और नैतिकता का ह्रास होता गया तो वह विकास का, उस विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। नैतिकता के साथ जो विकास होता है, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करते हुए जो विकास होता है, अपनी मातृभाषा अपने राष्ट्रभाषा की रक्षा करते हुए जो विकास होता है, वही सार्थक विकास होता है। अन्यथा विकास तो अंग्रेजी शासन में भी थे लेकिन हम परतंत्र थे, हमारी सभ्यता संस्कृति का दमन किया जा रहा था। आज भी हम अगर नहीं चेतेंगे, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति की रक्षा हम युवा वर्ग अगर नहीं करेंगे, तो फिर दूसरा कोई भी नहीं है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रख सकता है। तो आइए, मिथिला में महेशवाणी प्रायः गाया जाता रहता है, तो सुनते हैं महेशवाणी कल्याणी सिन्हा और सहेलियों के स्वर में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो अभी आप विज्ञापन से पूर्व सुन रहे थे महेश वाणी, बोल थे डमरुआ हे गौरी लो गेल चोर, शारदा सिन्हा के स्वर में। अब हम आपको सुनवाते हैं कल्याणी सिन्हा और सहेली के स्वर में एक और महेश वाणी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कल्याणी सिन्हा और सहेली के गाए इसी महेशवाणी के साथ अब युवानी कार्यक्रम का समय यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं पर आधारित हमारा एक कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। और श्रोताओं, अब हम चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में, और अभी से लेकर 6 बजे तक हम आपको नई नई फिल्मों के गाने सुनवाएंगे और मनोरंजन करवाएंगे। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। गाने के बोल थे कलेजा कड़के और फिल्म था आँख मिचौली। गायक कलाकार थे सचिन जिगर, दर्शन रावल और आशीष कौर। संगीत निर्देशन सचिन जिगर का था और गीत रचना जिगर सरैया का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व श्रोता, फिल्म संगीत के अंतर्गत सुन रहे थे नज़ारा। आंखों की गुस्ताखियां फिल्म से लिया गया यह गीत। कलाकार थे विशाल मिश्रा और गीत रचना सह संगीत भी विशाल मिश्रा के ही थे। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत अगला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:00 बजकर

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: से पूर्व आपने दो फिल्म संगीत सुने, इसमें अभी से पूर्व जो फिल्म संगीत बजा और उससे पहले जो फिल्म था वो गीत थी उम्मीदों की तितलियां, फिल्म का नाम था अकेली और गायक कलाकार थे सुनिधि चौहान, गीत रचना मनोज, गीत रचना राजशेखर का और संगीत निर्देशन हितेश सोनिक का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है, यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई समय गवाए घोषणा की है कि किसी भी छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।
3: आई बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34-34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 की विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पांडुप जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी ली। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटक से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने

0: सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में जानकारी देना। तो आइए सुनते हैं हमारे अगले कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर बाद 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे विद्यापति गीत। मैथिली संवाद हम आपको सुनवाएंगे 6:25 पर। शाम 6:30 पर समय होगा ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर। 7:00 सुनेंगे खेती गृहस्थी। 7:30 पर हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे।

7:52 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 8 बजे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सिंगरहार का समय होगा 8:15 पर। 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे News@9 ये हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। उर्दू खबरें 9:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 9:30 पर हम आकाशवाणी दरभंगा से आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। फिर 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से

और एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। तो कल 5:50 पर हम आपको सुनवाएंगे चिंतन। कृषि चर्चा का समय होगा 5:55 पर। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, जो 6:00 सुनवाएंगे हम आपको। 6:05 पर स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आप सुनेंगे गर्भाशय में सूजन, विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर हिना आरजू। वंदना कार्यक्रम का समय होगा 6:10 पर। हम भक्ति गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। कल सुबह 6:10 पर 6:40 पर समय होगा रामचरितमानस गान का। 6:50 पर 6:55 पर हम संस्कृत समाचार अपने दिल्ली केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे। 7:00 हिंदी समाचार सुनवाएंगे और 7:05 पर हम आपको सुनवाएंगे

7:05 पर नमस्कार मिथिला हम आपको सुनवाएंगे और फिर हम लिए चलेंगे आपको दिल्ली और दिल्ली से प्रस्तुत होंगे समाचार प्रभात सुबह 8 बजे मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर खबरनामा 8:30 यानी 8:30 पर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे 8:48 पर और अंजुमन 9:10 पर फिल्म संगीत का समय होगा 10 बजे और 10:30 भी फिल्म संगीत जारी रहेगा। तो ये था कार्यक्रम विवरण जिसमें हम आपको सुनवाए आज इस सभा में बाकी कार्यक्रमों के बारे में और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं अब समय हो चला है विद्यापति गीत का, तो आइए सुनते हैं विद्यापति गीत।

उगल चांद हम देखल सजनी के, गौतम मिश्र के स्वर में ये विद्यापति गीत हम अभी सुन रहे थे। आइए सुनते हैं एक और विद्यापति गीत।

अभी आप राम कुमार मल्लिक के स्वर में सुन रहे थे ये विद्यापति गीत। श्रोताओं, अब समय हो चला है मैथिली संवाद का, जिसे हम पटना केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी देर

0: अभी आप राम कुमार मल्लिक के स्वर में सुन रहे थे ये विद्यापति गीत। श्रोताओं, अब समय हो चला है मैथिली संवाद का, जिसे हम पटना केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। पटनाक बांकीपुरक विधानसभा सीट पर उपचुनावक लेल आइ भेल मतदान कड़गर सुरक्षा व्यवस्थाक मध्य शांतिपूर्वक सम्पन्न भऽ गेल। निर्वाचन आयोग सँ भेटल जनतबक अनुसार सांझ 5 बजे धरि 33.6% मतदान भेल अछि। उपचुनाव के लऽ कऽ मतदाता सब मे भारी उत्साह देखल गेल। भोरहि सँ बूथ सब पर मतदाता सभक नम्हर पाँति देखल गेल। महिला आ युवा मतदाता सब विशेष उत्साहक संग लोकतंत्रक उत्सव मे भाग लेलनि। शांतिपूर्ण आ निष्पक्ष चुनावक लेल आयोग विशेष प्रबंध कयने छल। मतदान केन्द्र सब आ लगपासक क्षेत्र मे जिला पुलिस बलक संग संग केन्द्रीय अर्धसैनिक बलक जवान सब के सेहो तैनात कयल गेल छल। सब 422 बूथ पर लाइव स्ट्रीमिंग आ वेबकास्टिंगक माध्यम सँ निगरानी राखल गेल छल। मतदान समाप्त हेबाक संगहि 25 उम्मीदवार लोकनिक भाग्य ईवीएम मे बंद भऽ गेल अछि। मुख्य मुकाबला भाजपाक नीरज कुमार, राष्ट्रीय जनता दलक रेखा कुमारी आ जन सुराजक प्रशांत किशोरक मध्य मानल जा रहल अछि। विधानसभा क्षेत्रक प्रमुख मतदाता सब अपन मताधिकारक प्रयोग कयलनि। सांसद रविशंकर प्रसाद, विवेक ठाकुर, पूर्व सांसद सीपी ठाकुर, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी आ विधायक श्याम रजक अपन अपन मतदान केन्द्र पर वोट खसौलनि। राज्यसभा में आई पेपर लीक रोकबाक लेल आनल गेल विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पर चर्चा कयल जा रहल अछि। एहि सँ पहिने कार्मिक लोक शिकायत आ पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सदन में विधेयक प्रस्तुत कयलनि। ई विधेयक काल्हि लोकसभा में पारित कऽ देल गेल छल। जदयूक वरिष्ठ नेता आ राज्यसभा सांसद संजय झा आकाशवाणी समाचार सँ गपशप मे कहलनि जे पहिनेक सभ सरकारक कार्यकाल मे पेपर लीकक घटना होइत रहल अछि। ई पहिल एहन सरकार अछि जे एंटी पेपर लीक कानून बनेबाक लेल पहल कयलक अछि। एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चाक दरमियान ओ विपक्ष के नेता राहुल गांधीक व्यवहार आ भाषाक आलोचना कयलनि। सावनक पवित्र मास आइ सँ आरंभ भऽ गेल अछि। एहि बेर सावन मासक दरमियान 4 सोम पड़त। प्रदेशक विभिन्न मंदिर आ शिवालय सब मे श्रद्धालु सभक भारी भीड़ देखल जा रहल अछि। सुल्तानगंजक अजगैबीनाथ, सोनपुरक हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुरक बाबा गरीबनाथ आ राजधानी पटनाक विभिन्न शिवालय सब मे भारी संख्या मे श्रद्धालु पहुंच रहल छथि। हमर कैमूर संवाददाता जनौलनि जे मां मुंडेश्वरी मंदिर मे चतुर्मुख महादेवक जलाभिषेक करबा लेल भक्तक भारी भीड़ उमड़ि रहल अछि। मॉनसूनी गतिविधि बढ़ेबाक कारणे पटना आ लगपासक क्षेत्र मे वर्षा भऽ रहल अछि। राज्यक कतेको भाग मे मध्यम स्तरक वर्षा दर्ज कयल गेल। मौसम विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार पछिला 24 घंटाक दरमियान कटिहारक मनिहारी मे सभसँ बेसी 45.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल। विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक जे आइ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण आ सीवान सहित प्रदेशक उत्तर पश्चिम भाग मे कतेको ठाम तेज हवाक संग वर्षाक संभावना अछि। राज्यक कतेको भाग मे वर्षाक कारणे गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक आ अधवारा समूहक नदी सभक जलस्तर मे कतेको ठाम वृद्धि दर्ज कयल गेल। केन्द्रीय जल आयोगक रिपोर्टक अनुसार गंगा नदीक जलस्तर मे बक्सर मे वृद्धि दर्ज कयल गेल, जखनकि पटनाक दीघा घाट, गांधी घाट आ हथिदह मे नदीक जलस्तर स्थिर बनल अछि। बागमती नदी मुजफ्फर पूर्वक बेनीबाद मे लाल निशान सँ लगभग 1 मीटर ऊपर बहि रहल अछि। कोसी नदी खगड़ियाक बलतारा मे खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि। ओतहि अधवारा समूहक नदीक जलस्तर मे

0: सौली घाट में वृद्धि दर्ज कयल गेल अछि। वैभव सूर्यवंशी के आगामी दलित ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता लेल ईस्ट जोन टीमक उपकप्तान चुनल गेल अछि। एतेक कम उम्र मे वैभव सूर्यवंशीक ईस्ट जोन टीमक उपकप्तान बनब बिहार क्रिकेट एसोसिएशनक लेल गर्वक बात अछि। पत्र सूचना कार्यालयक दिस सँ दरभंगा समाहरणालय सभागार मे हर घर तिरंगा विषय पर क्षेत्रीय मीडिया वार्ता कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल। सीमा सुरक्षा बलक कमांडेंट राजेंद्र कुमार आ जिलाधिकारी कौशल कुमार कार्यक्रम के संबोधित कयलनि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण परिवेश पर आधारित हमारा कार्यक्रम गाम घर।

आजुक गाम घरक दलान पर सब श्रोता लोकन के स्वागत संगे अनिल भाईक नमस्कार। आई बृहस्पति दिन है, आजुक दिन गाम घरक दलान पर हम सब सुनै छी कार्यक्रम जागरूक गाम। एहि कार्यक्रम में खास कर हम सब जागरूकता के संबंध में बेसी गप करै छी। समाज में पसरल बहुत रास एहन समस्या अछि जाहि विषय में हमरा अहाँ के जागरूक छी, मुदा आरो बेसी जागरूकता के आवश्यकता अछि। संगे श्रोता लोकन कह दीजिए, आई एकटा विशेष दिवस अछि, ओ अछि विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस। एकर संबंध में सब गोटे के जानकारी राखब आवश्यक है। हरेक वर्ष 30 जुलाई अर्थात आजुक दिन विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के रूप में मनाओल जाते है। एकर मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी से पीड़ित लोक सभक अधिकार के सुरक्षा करब। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दिस से सन 2013 ईस्वी से एहि दिवस के मनेबाक घोषणा कयल गेल छल। एहि समस्या से पीड़ित लोक सभक स्थिति के संबंध में जागरूक करब, संगे एहि अपराध के जड़ मूल से समाप्त करब अछि। मानव तस्करी के अर्थ आ स्वरूपक संदर्भ में जो विचार करी तो आधुनिक युग में सबसे बेसी नम्हर घृणित अपराध है जे कोनो स्थिति में क्षम नहीं। एहिमे बल, जबरन, धोखाधड़ी आ प्रलोभन द कऽ जे निर्दोष व्यक्ति छथि, जे मासूम व्यक्ति छथि, ओकरा सबके जाल में फंसा देल जाइत अछि। ई मुख्य रूप से एहि तरह अछि। महिला आ धियापोता लोकनि के सबसे बेसी यौन शोषण देह व्यापारक लेल खरीद बिक्री होइत अछि। जबरन श्रम, बलात् मजदूरी, गरीब आ मजदूर वर्ग के लोक सबके कर्जाक जाल में फंसा व प्रलोभन द कऽ अमानवीय परिस्थिति में हुनका सबसँ जबरदस्ती काज करायल जाइए। मानव अंग के तस्करी लचार आ मजबूर लोक सबके बिना सहमति से व धोखा द कऽ ओकर शरीरक जे महत्वपूर्ण अंग होइत अछि, जेना लीवर भेल, किडनी भेल, ओ अंग के निकाल देल जाइत अछि आ ओकर अनैतिक व्यापार कयल जाइत अछि। जबरदस्ती भीख मांगय वाला काज, अपराध करायब, छोट छोट बच्चा सबक अपहरण कऽ ओकरा से भीख मंगेबा वाला काज करेबाक लेल बाध्य कयल जाइए, संगे हुनका अपराधक दुनिया में जबरदस्ती धकिया देल जाइए। महानगर के ई समस्या अछि। ओना श्रोता लोकनि गप करी।

तो विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के महत्व और उद्देश्य संबंध में जागरूकता बढ़ाए समाज आ सरकार के इस संबंध में जागरूक करब जे मानव तस्करी मानवाधिकार के अतिक्रमण आ उल्लंघन है। पीड़ित लोक सब के समर्थन जे व्यक्ति व लोक ऐ नर्क से बाहर भ गेल छथि हुनकर पुनर्वास के लेल आ फिर मदद के लेल काज करब। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऐ घृणित काज में लागल जे संगठित गिरोह देशक भीतर व देशक बाहर पुलिस आ न्याय प्रणाली के मजबूत करब भारत आ वैश्विक स्तर पर किछ महत्वपूर्ण डेग बढ़ाओल गेल अछि। कानूनी प्रावधानक जँ गप करी तो भारत के संविधान अनुच्छेद 23(1) में मानव तस्करी आ बेगार प्रथा पर गुलामी प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देल गेल अछि। भारतीय कानून के हिसाब से कठोर दंड देबाक प्रावधान अछि। संगे देश के विभिन्न भाग में एहन मामला सभक शीघ्रता से जांचक लेल मानव तस्करी रोधी इकाई के स्थापना कयल गेल अछि। तो श्रोता लोकनि गप करब हम सब साँझक बेर। देखियो गतिशीलता सजीवता के चिन्ह होइए पहचान होइए अपन दैनिक क्रियाकलापक लेल देशाटन के लेल घूम फिर के लेल एक ठाम से दोसर ठाम हम अहाँ जाइ छी। मुदा कखनो कखनो एहनो होइए जे मौसम जलवायु के जखन विपरीत परिस्थिति होइए गर्मी एक मास के गप करी तो तीख जखन रौद लगै छै तो मोन होइए कनिक दूर चलला के बाद कनिक आराम कऽ ली। तो कलाकार छथि यही भाव के संग बटोही के कहि रहल छथिन जे रुक जाओ हमरे गाम तो सुनी हम सब एकटा सुंदर संगीत।

0: बटोही रह जा हमरे गाम। ये गीतक कलाकार सज्जन कुमार चौधरी, जेहने स्वर आ तेहने गीत संबोधन से हो नीक छल। ते श्रोता लोकन कहल गेल छे जे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनक वास होइए। जो शरीर से हम अहाँ स्वस्थ रही छी, नीक रही छी, तो कार्य क्षमता बढ़िए, काज करो के जे ऊर्जा होइए वो बेसी होइए। आ जखन ये दोनों चीज बढ़ जाइए तो समृद्धि अपने आप होइ छै। तो स्वस्थ शरीर समृद्ध किसान, आ संगे किसान भाई लोकनि तो भरिगर काज सब बेसी करै छथि। कखनो कोनो कृषि यंत्र के एक ठाम से दोसर ठाम लऽ जाय पड़ै छनि, तो कखनो अन्नक बोरिया के लऽ जाय पड़ै। तो ओहि काल में की होइ छै जे कोनो न कोनो तरहक शरीर में आघात होइ छै। जेना पहिने देखब जे लोक सब गाछ पर से कूद जाय छला मुदा किछु नहि होइ छै, आ आब त स्थिति एहन अछि जे चौकी से वा पलंग से लोग नीचा खसै छै त हाथ पैर टूट जाय छै। एकर कारण अछि हमर अहाँ के जीवन शैली, हमर अहाँ के खेनाई पिनाई जे संतुलित मात्रा में हेबाक चाही से नहीं भ रहल अछि। कह के लेल त हम लोग पहिने से बेसी नीक निकुत खाई छी, मुदा जे गुणवत्ता भोजन में रहक चाही ओकर अभाव बुझना जाइए। तो आई हम सब एहने विषय से संबंधित एकटा भेंट वार्ता सुनै छी। विषय अछि स्वस्थ शरीर समृद्ध किसान, किसानों के लिए फिजियोथेरेपी का महत्व। भेंट वार्ताकार छथि डॉक्टर अकील अहमद सिद्दीकी, हिनका से गप कर रहल छथि अनिल कुमार कर्ण, प्रस्तुति अछि असद दाऊद के। तो दोनों गोटे के बीच जे गप भ रहल अछि से हमहू सब सुन ली, ध्यान द क सुनल जा। किसान भाई लोकनि, आइ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। आइ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित छथि डॉक्टर अकील सिद्दीकी, अपने फिजियोथेरेपिस्ट थी। अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, संगे अपने के नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार कर्ण जी, आपने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, के लिए बहुत बहुत

0: धन्यवाद।
1: अपने फिजियोथेरेपी वाला काज करै छी, फिजियोथेरेपिस्ट छी, तऽ सबसँ पहिने जे हमर किसान छै, ओना तऽ बहुत रास शिक्षित किसान, पढ़ल लिखल किसान छै, मुदा बहुत रास किसान भाई लोकनि एहनो छै जिनकर शिक्षा दीक्षा कम छै, तऽ ई फिजियोथेरेपी की अइ, एहि सन्दर्भमे विस्तारसँ कहल जाय।
2: फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपिस्ट कहा जाता है। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है कि आप फिजिकल तौर पर भौतिक चिकित्सक को कहा जाता है कि आप विदाउट मेडिसिन, बगैर दवा से इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी है वो चीज़ कि आप जितनी भी मेडिसिन को अवॉइड करके फिजिकल थेरेपिस्ट की तरफ आप रुझान कीजिएगा, आगे उनके साथ जुड़िएगा, तो फिजियोथेरेपी एक बड़ा रोल अदा करता है।
1: एहन कहल गेल छे जे एहन जे भागदौड़ जिंदगी लोक के चल रहा है, लोक सबक जीवन बड बेसी गतिशील भ गेल अछि, जे सतर्कता गेल आ दुर्घटना भेल, तो एहि संदर्भ में अहाँ की कहे चाहबै जे एहन कोन काज करी, एना कोन रूपे हम सब सतर्क रही, क्योंकि दुर्घटना तो कतौ भ सकैए, कखनो भ सकैए, जाहि सँ हम दुर्घटना से कम बचल जा सकी।
2: कि आप तो पहला ये है कि अगर गाड़ी पर चल रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, तो हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए और अपने डायरेक्शन में चलिए। हेलमेट पहनिएगा तो उससे दो चीज नहीं होगी, एक सर्वाइकल जो आम बीमारी हो गई है लोगों को, उस बीमारी से भी आप बचिएगा, आपको सेफ्टी रहेगा। और दूसरा ये कि एक अपना जो डायरेक्शन है चलने का, एक जिस डायरेक्शन से जाइए अपोजिट उस डायरेक्शन से आइए, सतर्क रहिए, गाड़ी कम तेज पर चलाइएगा, कहीं ठीक रहिएगा। अपने आप को तो फिट रखना ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह अपने आप को फिट रखना चाहते हैं।
1: निश्चित रूप से अहाँ नीक गप कह रहल छी। देखियो, एहन कहल गेल छे जे स्वस्थ शरीर समृद्धि के रास्ता होइए, जे कोनो व्यक्ति वा कोनो किसान जे भाई स्वस्थ छै शारीरिक रूप से, हुनका लग में समृद्धि अबै छै, तो ई जे कोनो तरहक दुर्घटना होइए एहिमे अपने नीक गप कहलिए, जे निर्धारित गति सीमा के अंदर जो अपन वाहन के अहाँ चलबै छी आ बड बेसी गति से चलबै छी, तो एकटा अनुभवी व्यक्ति के कहब छै जे दुनू व्यक्ति के जे अंतर होइए गंतव्य स्थान पर पहुँचे के, ओ बेसी कालक अंतर नहीं, मात्र 5-6 मिनट के अंतर होइए। ओहि 5-6 मिनट में निर्धारित गति सीमा के अंदर चलबा वाला व्यक्ति यात्रा के आनंद लै छथि, जे बड बेसी द्रुत गति से वाहन के चलबै छथि ओ हरेक क्षण जीवै छथि, हरेक क्षण मरै छथि। एहि संदर्भ में अहाँ की कहे चाहबै?
2: आज के जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में एक अलग ही जोश होता है कि हम तेज वाहन चलाएंगे तो हमको अच्छा माना जाएगा, लेकिन अपनी जिंदगी है, अपनी अपना सेहत है, आपके घर वाले इंतजार कर रहे हैं आपका, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा बाहर से आएगा जाएगा, तो आपको अपना सोचना होगा और एक लोगों में एक अवेयरनेस आने की जरूरत है, जागरूकता भी लाने की जरूरत है कि वो चीज़, खासकर जो रूरल एरिया है, जो गांव एरिया है, उसमें मैंने उसमें जो हमने फील किया है चीज़ों को, कि वहाँ एक अजीब ही एक युवा में जोश रहता है कि अपना दौड़ गंजी पहन के और हाफ पैंट पहन के बाइक, धुआंधार बाइक चला रहे रोड का, वहाँ और अच्छा नहीं होता है गाँव वगैरह का रोड, इस वजह से ऊबड़ खाबड़ ज्यादा होता है, तो आपको कमर दर्द भी होगा, गर्दन दर्द भी होगा, उसके बाद आपको रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को यही बताएंगे कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिए, खासकर युवा पीढ़ी को, जान है तो जहान है।
1: ओना ई तो बड़ नीक गप कहलूँ अपने, मुदा एहनो देखल जाए छे जे सड़क पर दुर्घटना के एकटा आरो प्रमुख कारण है जे लोग वाहन चलबैत काल में मोबाइल फोनक व्यवहार करे छे, ओना ई प्रतिबंधित है, मना ही है, तो इस संदर्भ में अहाँ की कहे चाहबे?
2: बिल्कुल, आप बहुत बहुत बारीक बात बताई आपने, और बहुत लोगों को मैं भी देखा हूँ कि गर्दन पे मोबाइल लगा के ऊपर से हेलमेट लगा के चलाते हैं, तो सिर्फ एक्सीडेंट का ही डर नहीं होता है, आपको सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस का भी बीमारी शुरू हो जाएगी, गर्दन में जकड़न शुरू हो जाएगा, जकड़न में आपको इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाएगा, आपको स्पोंडोलाइटिस की शिकायत शुरू हो जाएगी, तो आपको तो एक प्रॉब्लम नहीं 10 प्रॉब्लम शुरू हो रहा है और आपका ध्यान भटकेगा आपको। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको बात करनी है किसी बहुत बहुत जरूरी बात है, तो 5 मिनट रुक, 5 मिनट बात कर लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है, जान है तो जहान है। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने आप को कितना बचाते हैं, कितना आपको अपने सेफ्टी रखते हैं अपने आप को, वो चीज बहुत जरूरी है।
1: एहन देखल जा रहा है।

0: पहिने लोक सबके बेसी जोर वा बेसी ऊंच सँ खसला वा गिरलाक बादो हड्डी में कोनो तरहक आघात नहि होइ छल। मुदा आब तऽ एहन देखल जा रहल अछि जे चौकी पर से ओछाउन सँ लोग नीचा माटि पर जमीन पर खसै छै जे पैरक हड्डी टूटि जाइ छनि, हाथक हड्डी टूटि जाइ छनि। एहि सन्दर्भमे अहाँ की कहै छी?
1: अगर हम बहुत डीपली हम लोग जाए तो दो चीज जो हमको देखने को मिल रहा है, एक ये है कि यूथ जो जनरेशन है उनकी माएँ जो हैं वो अपना दूध बच्चों को कम पिलाती थी, डब्बे का दूध ज़्यादा पिलाती हैं। इससे माँ का दूध 5 साल तक बच्चों को पिलाना चाहिए जिससे उसकी हड्डी मजबूत होती है, उसमें कमी आई है। एक दूसरा ये कि आज जो खान पान का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है कि लोग सुबह में 7 बजे 8 बजे तो नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता भी नहीं करते हैं, खाली पेट चाय पीते हैं और दिन का खान पान चेंज हो गया, लोग 1 घंटा आधा घंटा विश्राम आराम करना चाहिए, उसमें कमी आई है। तीसरी चीज ये आई है कि आदमी का काम का प्रेशर इतना हो गया है लोगों के बीच में कि लोग अपने डेली जो एक्टिविटी है उसमें बहुत कमी लाना शुरू कर दिया है। ये चीज जरूरी होती शाम में जो खेलने का वक्त होता था 1/2 घंटा 1 घंटा, उसमें कमी आई है। ये सब जो लाइफ स्टाइल है लोगों की वो चेंजिंग शुरू हो गई है, जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया, हड्डी कमजोर होना शुरू हो गया, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गया। हड्डी कमजोर होगी तो आप कहीं भी गिरिएगा तो फ्रैक्चर होना ही है।
0: ओना पहिने ई देखल जाइ छल जे 50 वर्ष के बाद हड्डी के वा कोनो जोर संबंधी दर्द के शिकायत हो, जे बेसी उम्र वाला लोक सब चले हुनका कखनो काल के ठेहुना में वा हाथ में वा कान में जोर सब में बेसी हुनका दर्द होइ छलेन वा जोर प्रभावित होइ छल। मुदा आब त ई आयु सीमा कोनो रहि नै गेला, जे छोट छोट बच्चा के एहन देखल जाइए जे अइ जोर संबंधी शिकायत भऽ रहल अइ तऽ कखनो ठेहुना में दर्द भऽ रहल अइ, एकर की कारण छै आ एकर निदान की छै से?
1: बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही और लोगों को जानकारी रखनी भी चाहिए कि आजकल जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं इतना भारी भरकम बैग, किताबों से लदा बैग जो होता है, आप कोई भी बच्चा 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल मैक्सिमम 10 साल का होता है, पुस्तकों का वेट इस कदर बढ़ा है जिससे बच्चों में गर्दन का प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो गया है, कंधे का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। बच्चे कहते हैं कि मम्मी मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा है, तो प्रेशर पड़ेगा बॉडी में, ऊपर से बॉडी का सारा प्रेशर आपका ठेहुना लेता है, ऊपर से आप बच्चों को इतना वेट डाल दिया किताबों का लेके गर्दन पे, तो पड़ेगा ही। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप बच्चों को कि किताबों का वेट पर कमी होनी चाहिए, कम किताब होनी चाहिए, नहीं तो आने वाला जनरेशन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ बढ़ा देगा।
0: मान लिये कि अगर कोनो तरह दर्द भ गेल या घुटना के दर्द रहे, जे कन्हा के दर्द रहे वा हाथ के दर्द रहे, तो फिजियोथेरेपी में एकर कोन विधि से कोन तरीका से उपचार करे छे, निदान करे छे, ऐ संदर्भ में किसान भाई लोगन
1: एक जो आपको मैंने बताया अभी, मैंने कहा कि ये जनरल जो प्रॉब्लम होता है तो सेक कुकर का मामला खत्म हो जाता है। एक आपने बताया कि 50 साल के बाद जो प्रॉब्लम शुरू होता है, तो अगर कंधे में प्रॉब्लम है, कारण तो बहुत है लेकिन दो कारण होता है। एक जो किसानों के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, किसानों में बोझ उठाना गेहूं का या फिर चावल का, जिस तरह का खेती बाड़ी होती
0: है, बेसी भार वाला सामान
1: उठाई छे, तो कंधे का जकड़न, वो जकड़न का कारण वही है,
0: फ्रोजन शोल्डर,
1: जिसको फ्रोजन शोल्डर भी कहा जाता है। और एक उसी में एक होता है प्रीऑर्थराइटिस, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट हो जाता है, यानी कंधे में जकड़न, जकड़न में इन्फ्लेमेशन भी होना शुरू हो जाता है, यानी उठेगा भी नहीं, कट भी शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इस कारण जो हम लोग देखा है उसमें आप लोग इतने गाँव में किसान लोगों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग जो करते हैं तो कोशिश कीजिए हाथ को ऊपर से उठाएं, नीचे रखें, ऊपर उठाएं नीचे करें, ज़्यादा दर्द है तो गर्म पानी नमक डाल के उसको सेकें, हाँ दवा का इस्तेमाल कम करें, नमक पानी उससे सेकिएगा, इसमें आराम मिलेगा।
0: घुटना शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जोर है शरीर के संपूर्ण भार अइ ठेहुना में घुटना पर पड़े, शरीर के ऊपर का हिस्सा का भार बेसी हुई है और निचल का हिस्सा का भार कम हुई है। तो घुटना में देखल जा रहा है ये लोक सब में दू तरह की समस्या हुई है, कोनो कोनो व्यक्ति के घुटना जे छे से बाहर के तरफ मुड़ जाए छे, कोनो कोनो व्यक्ति के घुटना भीतर के तरफ मुड़ लगे छे, ते एकर कारण की छे दोनों स्थिति के आ एकर निदान की छे से कहल जाए?
1: बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोगों को समझना चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जब 50 साल के बाद जो जीनेटिव चेंजिंग आती है ठेहुना में, उसमें अगर दादे पाँव फुला रहा, बहुत दादी वो हुआ, उस कंडीशन में भी आदमी का बिलो नहीं हो जाता है, जो जिस तरह का आपने क्वेश्चन अभी पूछा हमसे, तो उसमें निदान ये है कि

0: का ट्रीटमेंट है, नी ज्वाइंट का भी पटेला निकाला जाता है। एक बाई बर्थ होता है, कैफोसिस होता है, जो आपको बचपन से कर्वेचर आ जाएगा रीढ़ की हड्डी में या ठोने में, वो कर्वेचर हो जाएगा। कैफोसिस, स्कोलोसिस, लोडोसिस, ये बाई बर्थ होता है। और आप यहाँ लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसमें आप कहा कि अच्छा ये ओल्ड एज में आपको देखिएगा बूढ़ों में या इसमें एक गठिया की बीमारी आती है, गॉट गठिया की बीमारी होती है। तो उस कंडीशन में एज ए फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस तरह के पेशेंट हैं, मरीज हैं, तो हम लोग पाराफिन वैक्स, एक मोम आता है, उस मोम का उसमें हम लोग सिकाई करते हैं। मोम से सिकाई से जो स्वेलिंग है वो ख़त्म होती है, इन्फ्लामेशन होता है वो ख़त्म होता है, पेन होता है ख़त्म होता है। वो ख़त्म होने के बाद एक एक एक्सरसाइज कराई जाती है जिसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स ड्रिल कहा जाता है। यानी क्वाड्रिसेप्स ड्रिल, जो क्वाड्रिसेप्स मसल है ऊपर का जांघ का मसल, ये कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से आपको चलना फिरने में भी बहुत दुश्वारी, क्योंकि आपको यही मसल जो क्वाड्रिसेप्स मसल है जो स्ट्रांग किया जाता है नी ज्वाइंट को, ठोने की हड्डी को, तो उसमें उसके एक्सरसाइज कराते, उसको मजबूत करते हैं हम लोग, उसमें पावर लाते हैं। वो पावर धीरे धीरे आएगा, लेकिन फिजियोथेरेपी में इसका 100% इलाज है, 100% ट्रीटमेंट है। आप विदाउट ऑपरेशन ये फिजियोथेरेपी इससे करा सकते हैं, इससे फायदा होता है।
1: अंत में अखिल सिद्दीकी साहब, हमारे किसान भाई लोग ये जानना चाहता, ये हड्डी में कोनो तरह खून का आघात नहीं हुई, कोनो तरह समस्या नहीं हुई, दू शब्द में उनका की कह चाहे जी कौन तरह वो अपन काज करें जाहिसँ ऐ सब तरहक समस्या नहीं भ सके।
0: मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग जब खेत में जाएं, इनकी उम्र 40 से ऊपर है या 50 से ऊपर है, नी कैप आता है, उस नी कैप को ठोना पर पहन के आप अपनी खेतीबाड़ी करें। इससे आप, क्योंकि आपका काम लंबा होता है, एक आध घंटा, दो घंटा, चार घंटा लगातार वर्क होता है, आपको सेफ्टी का काम करेगा वो, आपको रिलैक्स करेगा वो, आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराएगा वो। जब आप अपने काम से आप काम ख़त्म कर लेते तो नी कैप उतार के आप रख लीजिए, उससे आपको आराम मिल जाएगा।
1: डॉक्टर अखिल सिद्दीकी साहब, अपने फिजियोथेरेपी के महत्व के संदर्भ में किसान भाई लोकन के नीक जानकारी दिलियन, ताहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एखन हम सब भेंट वार्ता सुन रहल छलहुँ, विषय छल स्वस्थ शरीर समृद्ध किसान, किसानों के लिए फिजियोथेरेपी का महत्व। भेंट वार्ताकार छला डॉक्टर अखिल अहमद सिद्दीकी, हिनका संग गप कऽ रहल छला अनिल कुमार कर्ण, प्रस्तुति छल असद दाऊद। नीक जानकारी भेटल, सब गोटे के धन्यवाद। अब गीत नादक आनंद ली हम सब, सावन मास आरंभ भ गेलै, तो एकटा सुनी सुंदर सन भोला बाबा के गीत।

खूब सुंदर। एखन जे हम सब गीत सुन रहल छलहुँ गीतक कलाकार छली कुमकुम झा। एहि संग आब आजुक जागरूक गाम कार्यक्रम के समय सम्पन्न भऽ चुकल अछि। खेती गृहस्थीमे सब किसान भाई लोकनिके अन्नदाता बंधु लोकनिके स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। किसान भाई लोकनि खेती पथारी वाला काजक संग हमसब पशुपालन वाला काज सेहो करै छी। आ खास कर ग्रामीण जीवन में अहाँ देखब जे पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ है। एकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड्ड बेसी योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। खास कर पशुपालन सँ हमरा सब के बहुत तरह के लाभ होइए। संपूर्ण आहार अमृत तुल्य दूधक आपूर्ति होइए दुधारू माल जाल सँ, खेती वाला काज में सहयोग होइए। मुदा सामान्य रूप सँ जँ गप करी तऽ जेना वातावरण जलवायु मौसम के प्रभाव सँ हम अहाँ दुखित होइ छी, तऽ ठीक अहिना माल जाल सब सेहो वातावरण के कारण मौसम के कारण संगे कखनो रौदी तो कखनो बरखा तो कखनो जार कखनो गर्मी एकर सभक प्रभाव के कारण दुखित भऽ जाइए। तो आई खेती गृहस्थी में हम सब माल जालक जे सामान्य रोग अइ ओहि संदर्भ में विचार करब। तो सबसे पहिने जे एकटा रोग होइए ओ अपच रोग होइए। एकर कारण के संबंध में जँ विचार करी तो माल जाल में ई रोग सामान्य रूप से बेसी दाना खा लेबाक कारण होइए। अइ रोग में पशु के पेट फूल जाइ छै, पाउज नहीं करइए, भोजन करब सेहो बंद कऽ दइए आ गोबर करगर हुआ लगै छै। अइ रोग से बचाव के लेल आ उपचारक संबंध में विचार करी तो सबसे पहिने रोग से ग्रसित पशु के दाना आ चारा देनाय बंद कऽ दी। एकर बाद 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट के मिलाकर 1 लीटर सुसुम पानी

मे नीक जका फेट ली आ रोगी पशु के पिया देवाक चाही। संगे किसान भाई लोकन गरम पान में कपड़ा के भिजा क पेट के बाम भाग के सेक चाही। अपेक्षित सुधार नहीं भेला पर लगले तुरंत योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करक चाही। दस्त मालजालक इहो सामान्य रोग अछि। एहि रोग से ग्रसित पशु के पातर गोबर होबय लगैत अछि। एहि रोग से बचाव के आ उपचारक संबंध में जँ गप करी तो वजन के हिसाब से सल्फामिडीन के 5 ग्राम के गोली 2 से 4 टैबलेट भिनसर आ साँस देबाक चाही। ई दवाई अपने 3-4 दिन धरि दऽ सकै छी। एकर बाद आंतरिक कृमिनाशक योग्य पशु चिकित्सक के सलाह पर अपने दऽ सकै छी। अफरा जखन कोनो पशु आवश्यकता से बेसी हरियर चारा खा लैया जेना बरसीम भेल लरसन भेल तब पशु के अफरा रोग भऽ जाइ छै। तैं पशु के सदिखन वजन के हिसाब से संतुलित मात्रा में भोजन देबाक चाही। एहि रोग के प्रमुख लक्षण अछि पेट में गैस भरऽ लगैया, पाउज नहीं करिए, भोजन करब बंद कऽ दैए, पेट के हाथ से जँ थपथपेबै तो ढोल जकाँ आवाज होइए। एहि रोग में सबसे पहिने हरियर चारा देनाइ बंद कऽ दी। आधा लीटर तीसी के तेल में 500 मिलीलीटर तारपीन के तेल मिलाकर पशु के पिया देबाक चाही। रोगी पशु के पेट के बाम भाग के गर्म पानी से सेकक चाही। एकर उपरांत पशु चिकित्सक से लगले संपर्क करी आ सलाह लेबाक चाही। हम सब विस्तार से गप करब, गीत नादक आनंद ली। सुनी हम सब पहिने एकटा सुंदर संगीत।

कि यह अंगना में कौवा कोरेर करे। देखियो संवाद संप्रेषण के बहुत रास माध्यम हम अहाँ हुनकर भाखा नहीं बुझ सके छी, मुदा संकेत बुझ सके छी। गीतक माध्यम से कलाकार अपन भाव व्यक्त कऽ रहल छलथि। कलाकार छलै आधुनिका नूतन। अपन सभक मिथिलांचल में जलकर आ पोखर के कोनो अभाव नहीं अछि। आ पोखर में वा जलकर में दू तीन टा चीज होइए, पानी फल होइए, मखान होइए कि माछ होइए। तो आई हम सब ई जलकर में मिश्रित माछ पालन के संदर्भ में एकटा भेंट वार्ता सुनै छी। ई भेंट वार्ताकार छथि मंगलानंद झा, अपने वरीय वैज्ञानिक छी, कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैठ। हिनका संग गप कऽ रहल छथि अनिल कुमार कर्ण। तो दोनों गोटे एक बीच जे गप भ रहल से हमू सब सुनी।

0: किसान भाई लोकन आई खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत संगे सब गोटे के नमस्कार। आई आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर मंगलानंद झा, अपने वरीय वैज्ञानिक छी, एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चैनपुरा बसेठ जे जिला मधुबनी अंतर्गत है। डॉक्टर मंगलानंद झा जी, अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत संगे अपने के नमस्कार।
1: अपनों के नमस्कार अनिल जी।
0: हम आए अपने से गप करब जे कोनो काज के जखन आधारभूत प्रक्रिया संपन्न भ जाइए तो ओकर बाद वो आगू काज बढ़ाव के लेल अहाँ कह सके छी जे वो काज आरंभ कैल जा सकैए। पुरना पोखर के देखभाल केला के उपरांत नीक जकां व्यवस्था भ गेल तो किसान भाई लोकन के माछ पालक भाई लोकन के मन में आशंका रही छन जे माछ पालन कोना करी। ओना तो ई काज पारंपरिक ढंग से बहुत वर्ष से लोग कर रहा है, मुदा एकर वैज्ञानिक विधि की है जैसे बेसी लाभ भेट सके। हम सब मिश्रित मत्स्य पालन के संदर्भ में बहुत रास सुनने छी, मुदा डॉक्टर साहब हम आई अहाँ से जानना चाहब जे हमर किसान बंधु छथि माछ पालक भाई लोकन छथि, ओ जानना चाहै छथि जे मिश्रित मत्स्य पालन की अछि एहि संदर्भ में कहल जाए।
1: अनिल जी, मिश्रित मत्स्य पालन छै जे अपन देशी किस्म के जे माछ छै।

0: जाहिमे कतला छै, रेहू छै, मृगल छै। कतलाके हमसब भाकुर कहै छियै अपना भाषामे, रोहु माछ कहै छियै, नैनी माछ कहै छियै, जे अपन पुरान अपन एहिठामका प्रजाति अछि। विदेशी जे छै अहाँके किस्म छै, जाहिमे कि अहाँके सिल्वर कार्प छै, ग्रास कार्प छै, कॉमन कार्प छै, जे चाइनीज किस्म छै। छओगोके यदि हमसब मिश्र एक जगह मिश्रित करै छियै तकरे हमसब मिश्रित मछली पालन कहै छियै। मिश्रित मछली पालन कयलासँ एहि दुआरे फायदा छै जे तालाबके अन्दरमे खानाके तीनटा लेयर छै, एकटा ऊपरके छै, एकटा मध्यके छै, एकटा नीचाके छै। तैँ भिन्न भिन्न स्तरमे रहयवला मछली जे भिन्न भिन्न स्तरमे रहै छै, तकरामे यदि एक जगह यदि हम मिश्रित करै छियै तऽ तीनू लेयरके मछली यदि तालाबमे डालै छियै, ओहि किस्मके मछली, जेना अपन कतला छै, भाकुर जकरा कहै छै, से ऊपरसँ खाना लै छै, सिल्वर कार्प सेहो ऊपरसँ खाना लै छै, रोहु अहाँके मध्य सिरासँ खाना लै छै, कॉमन कार्प छै, नैनी छै, नीचासँ खाना लै छै, एकरा बादमे ग्रास कार्प छै, तो ग्रास कार्प जे छै से ग्रास कार्प लै छै अहाँके तालाबके अन्दरमे, जे लोक अलगसँ ओकरा पौधा दै छै, एहन चीज दै छै जाहिसँ कि ओकरा भोजन भेटै। नहि अन्तमे होइ छै तऽ किछु कुम्भियो जलकुम्भी घेरा लगा कऽ दऽ दै छै जे ओकरा ओ भोजन भेटैत रहै। भोजन नहिके लेल अहाँके घरमे जतेक किचनके जे पदार्थ अछि, जे साग सब्जी कटलहुँ हँ, ओकर जे किछु डस्ट छै ओहो ई तालाबमे अहाँ देल जा सकै छै, जे ओकरा जे ई दऽ देलियै घेराके अन्दरमे तो ग्रास कार्प अहाँके खेतै। तैँ मछलीमे एक दोसरके खानाके लेल अहाँके पासमे गोबर नहि अइ तऽ नया नया तकनीक अहाँके अयलैए, जे अपनासभके बाँसके बीचमे जे करची अबै छै, बैम्बू स्टिक एकरा हमसभ कहै छियै, एकरा छोट छोट टुकड़ामे काटि कऽ, या जाहिठमन मिल एखन चलै छै, सुगर किन मिल चलै छै, या अहाँ गुड़े पेड़ आबै छी तऽ ओकरा हमसभ सुगर केन बगास कहै छियै, एकरो या अहाँके पतोइ छै, ओहो सारा चीजके यदि लऽ कऽ बंठल डंठल बना बना कऽ यदि अहाँ दऽ दियै 250 से 300 क्विंटल, एकरा हर तीन महीना चारि महीनाके अन्दरमे यदि देबै तऽ ईसब प्लवक बननाइ क्राई बनतै। क्राई बनलाके बादमे पौधाके जे जन्तु जगतके वनस्पति जगतके प्लवक छै सेहो बनतै, जन्तु जगतके प्लवक सेहो बनतै, अहाँके मछलीके भोजन बढ़िआँ भेटतै, एकरा विस्तारसँ मछली भोजन करत आ मछलीके बढ़वार बेहतर हेतै।
1: सङ्गे सङ्ग ई जे मिश्रित माछ पालन होइए तऽ एहिमे जे छओ प्रजातिके अपने जीरा दै लेल कहलियै तऽ एकर अनुपात की होइ छै, प्रति हेक्टेयरके हिसाबसँ जँ विचार कयल जाय तऽ कोन माछक जीरा कतेक अनुपातमे देबाक चाही, माने किलोग्रामके हिसाबसँ अनुपातमे किसान भाई लोकनिके कहि दियौ।
0: अहाँके यदि संख्यामे यदि अहाँ डालै छियै तऽ एकर रेशियो हमसभ एक सएमे रखै छियै, जे तीन प्रजाति छै ई तऽ उपलब्धताके आधार पर छै, मानि लिअ ई छओ किस्म उपलब्ध रहै छै, तीने अपन यदि देशी किस्म उपलब्ध अइ, कतला अइ, रेहू अइ, मृगल अइ, तऽ ऊपरके लेवलवलाके कतला 40%, रेहू अहाँके 30% आ मृगल अहाँके 30% हमसभ डलबाबै छी अहाँ किसानके भाइके डालक चाहियनि। यदि चारि प्रजातिके अछि तऽ सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प आओर अहाँके चारि प्रजातिके अछि, एहिमे कतला जे छै से कतला अहाँके 20% अहाँके कतला डालू, 30% अहाँके नैनी डालू आ फेर अहाँके 30% जे बचि जाइ छै से अहाँके डालऽ पड़त नैनी कॉमन कार्प डालू, आ ओकरा बादमे अहाँके जे बचि जाइए तऽ ई अहाँके सिल्वर कार्प जे होइ छै सेहो ऊपरसँ खाना लै छै, 20% सिल्वर कार्प अहाँ सेहो लोड डालि सकै छी। छओ प्रजातिके यदि छै ताहिमे हमसभ डालै छियै 15% डालै छियै अहाँके कतला, रेहू डालै छियै 20% आ कॉमन कार्प जकरा करै छियै से 20%, बाँकी चारू मछलीके अहाँके 15% यदि 15 संख्यामे यदि हम डालि देबै तकर मिश्रण समुचित वैज्ञानिक अनुपातमे मिश्रण भऽ जाइ छै, कोनो तरहक प्रतिस्पर्धा नहि भरै छै, तालाबके अन्दरमे दोहन जे छै से पूर्ण रूपसँ जतेक खाद्य पदार्थ छै तकर हमरा दोहन भऽ सकैए, दोहन भेलाके बादमे हमरा माछके बढ़वार अहाँके बेहतर हेतै।
1: एहन देखल जाइ छै वा सुनलो जाइ छै वा कहि सकै छी जे जानकारी लोककेँ भेटलनि हँ जे माछक उत्पादन जे प्रति हेक्टेयर अपना सभक ठाम अछि, खास कऽ मिथिलाञ्चलमे वा अपन प्रान्तमे जँ गप करी, आन प्रान्तके अपेक्षा एकर उत्पादन अपना सभठाम कम होइए, तऽ एकर कारण की छै?

0: आ एकर निदान की छे इस संदर्भ में कहल जाए?
1: पहिल बात छे जे हम सब खाद और उर्वरक मिश्रित मछली पालन यदि करबै तो ओकरा पर्याप्त रूप में भोजन चाहिए। भोजन यदि अहाँ गोबर डाललिए, गोबर डालना के बाद में सबसे पहले हम सब देखै छिए जे एकरा अंदर में प्लवक कतेक बनले। तो अइ के लेल हम किसान भाई के कहबन जे अपन हाथ डालिए, अपन हाथ पानि के अंदर में डालू, एकटा हाथ अपन डालू, अपन अंगुली के एना के उठाऊ, जो अंगुली के अहाँ के देखम आबि गेल तो एकर मतलब भेले जतेक पारदर्शिता रहते, एकर मतलब होइ छै जे एतेक माछ के खाना कम छै। यदि गोबर डाललो के बाद में एतेक अहाँ के उत्पादन बेसी से बेसी लेबक चाहिए तो खाद संगे अहाँ के उर्वरक से वो अहाँ के डाल पड़त। अइ के लेल 30 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट या 25 किलोग्राम अहाँ यूरिया डाल सकै छी प्रति महीना के डर से। दोसर बात छै जे अहाँ के सिंगल सुपर फॉस्फेट छै, ओकरा बाद में एक डाई सुपर सिंगल सुपर फॉस्फेट अहाँ 12-15 किलोग्राम अहाँ डाल सकै छी, या ट्राई सुपर फॉस्फेट छै तकरा अहाँ 8-10 किलोग्राम अहाँ एकरा डाल सकै छी। जाहि में देखै छी जे पोटास की यदि कमी छै तो पोटासो के अनुशंसा अहाँ के 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से माहवारी एकरा डालू। चूना निश्चित रूप से हर महीना में चूना डालू, चूना अहाँ के 20-25 किलोग्राम चूना हर महीना में यदि अहाँ छिटाव करबै तो अहाँ के उत्पादन बेसी हैत। एक क्विंटल चूना अहाँ जीरा डालो से 15 दिन पहले डालू, ओकरा बाद में दोनों के अंतर कर लिया जे गोबर डाललिए तो गोबर के यदि चूना पहले फिर अगला महीना में चूना यदि डाले छे तो चूना डाला के बाद में गोबर यदि डालनो तो गोबर के दोनों के बीच में अहाँ के कम से कम 10 दिन के अंतर जरूर होबक चाहिए। तखने अहाँ के पर्याप्त मात्रा में प्लांकटन बनते और प्लांकटन बनला के बाद में जंतु प्लांकटन बनते, वनस्पति प्लांकटन बनते, पर्याप्त भोजन भेटते। आ भोजन के बाद में यदि तैयो देखै छी जे प्लांकटन पर्याप्त अहाँ के नहीं भेटल तो परिपूरक आहार के सेहो व्यवस्था छै जे ओकरा यदि हम माछ के देबै तो माछ में विषत व्यवहार हेतै, ओकर वजन के 3-4% एक हेक्टेयर के लिए यदि करै छी तो पहिल महीना में अहाँ के 2-3 किलोग्राम मूंगफली या अहाँ के सरसों राई के खली छै से या चावल के कुंडा छै दोनों के बराबर बराबर मात्रा में यदि बना कर दिए, टोकरी में बना कर दिए, लड्डू जका बना दिए, बनेला के बाद में निश्चित समय निश्चित स्थान पर अहाँ डालियो आ डालना के बाद में अहाँ देखियो भेड़ खाना के उठा लिया। आ नहीं तो होइया जे जूट वाला जे बोरा होइ छै बोरा में छेद क के ओरा लड्डू जका बना कर दियो, छोट छोट गोली बना कर दियो, देखियो जो खा यदि लेलकै। लेकिन कोशिश करू जै समय में डेली दै छियै ओही समय में दियो, निश्चित समय और निश्चित स्थान पर पानि के लेवल तक यदि अहाँ डाल देलिए, पानि के लेयर में जेना डालल जाइ छै पेंसिल्ला लोग गाड़ी दै छै तहिना ओकरा ओहि लेवल तक ओहिठाम निकलक चाहिए जे माछ ओहिमे छेद छेद कऽ कऽ अहाँके भोजन कऽ लेत। जतबी भोजन करिए ततबी दियौ, अहाँ खाना अहाँ छीट के दे देबै तऽ खाना अहाँके बर्बाद भऽ जायत।
0: तो डॉक्टर मंगलानंद झा जी, अपने मिश्रित माछ पालन के संदर्भ में माछ पालक भाई लोगन के बहुत सुंदर आ नीक जानकारी दलियन, ताहि लेल अपने के धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: मिश्रित माछ पालन एहि विषयक भेंटवार्ता हमसब एखन सुनि रहल छलहुँ। भेंटवार्ताकार छल मंगलानंद झा आ प्रस्तुति छल असद दाऊद के। नीक जानकारी भेटल, सब गोटे के धन्यवाद। एहि संग आब आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पे तो किसान भाई लोकनि अनिल भाई के चलबाक आज्ञा देल जाए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों पर आधारित कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में हमारे पटना केंद्र से, कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही।
2: कड़ी सुरक्षा, नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। ताजा जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक

0: लगभग 34% मतदान का अनुमान। राज्यसभा में आज पेश किया गया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक, विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर चर्चा जारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने की छापेमारी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुल्तानगंज में 1 लाख से अधिक कांवड़ियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में किया स्नान। अब समाचार विस्तार से। पटना के बांकीपुर की प्रतिष्ठित विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक 34% मतदान होने की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। महिलाओं और युवा मतदाताओं ने विशेष उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने विशेष इंतजाम किए थे। मतदान केंद्रों और आसपास के इलाकों में जिला पुलिस बल के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सभी 422 बूथों पर लाइव स्ट्रीमिंग और वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी गई। मतदान की समाप्ति के साथ ही 25 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मतदान के दौरान कैसा रहा माहौल, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन का। आशीष, बताएं कैसा रहा आज का मतदान?
2: जी खालिद, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भागीदारी देखने को मिली। युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता भी पूरे उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे थे।
0: जी बताएं कि किन प्रमुख लोगों ने मतदान में भाग लिया?
2: आपको बताते चले कि प्रमुख नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पटना विमेंस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने मतदान किया। वहीं डाक बंगला स्थित बूथ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर अपने पुत्र विवेक ठाकुर उनके साथ वोट डालने पहुंचे थे। इसके अलावा अलग अलग मतदान केंद्रों पर राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और रामकृपाल यादव भी मतदान करने पहुंचे। वही वार्ड 19 स्थित एक बूथ पर भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
0: अगर मुद्दों की बात करें आशीष, तो क्या लगता है आपको इस चुनाव में मुद्दे क्या रहे?
2: जी खालिद, विभिन्न मतदान केंद्रों पर जब हमने मतदाताओं से बातचीत की तो उन्होंने विकास को सबसे प्रमुख मुद्दा बताया। कई मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखकर मतदान किया है। वहीं युवाओं ने रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता बताया, जबकि कई वरिष्ठ मतदाताओं का मानना है कि विकास कार्यों की जो निरंतरता है वह यहां बनी रहनी चाहिए।
0: धन्यवाद आशीष इस जानकारी और अपडेट के लिए। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कहा कि उनका अपना मत विकास के लिए दिया है। मतदाताओं ने स्पष्ट किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क साफ सफाई, कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया।
3: यही कि जो हो एजुकेशन नॉलेज को लेके वो अच्छा हो, जो फ्यूचर का हो वो एजुकेटेड हो, लोगों के यूथ के प्रॉब्लम्स को समझे।
4: उम्मीद तो यही है कि अच्छा करे, विकास करे। हम लोग आम जनता वोट दे रहे हैं, विकास तो करना उन्हीं को है।
5: बहुत सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन है, बच्चों की नौकरी वगैरह है, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर है, उसी मुद्दे पर दिए।
6: हमारा मुद्दा विकास रहता है। अब की बार पढ़ाई, अभी आप देख रहे होंगे कि एंटी रिजर्वेशन भी चल रहा है, तो ये सब 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इसको नजर में रखा जाए।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी से रहा है, इसलिए चुनाव में जीत सुनिश्चित है।
7: आज अपने भाजपा एनडीए के उम्मीदवार नीरज जी को वोट देकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है, लेकिन एक बात मैंने देखा है कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है।
0: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। पटना में पत्रकारों से

0: बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि 3 अगस्त को नतीजे में भाजपा की बड़ी हार होगी।
1: जहां से भी फीडबैक आ रहा है, इस बार उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार होने जा रही है और हमारी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता जी भारी मतों से उनकी जीत होने जा रही है। समाज का हर तबका, चाहे किसी जात के हो, धर्म के हो, खुल करके जो है वोट दे रहे हैं।
0: राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पर चर्चा की जा रही है। इससे पूर्व कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक पेश किया। ये विधेयक कल लोकसभा में पारित कर दिया गया था। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तथा दोषी ठहराए गए अपराधियों की संपत्तियों की जब्ती जैसे कठोर प्रावधान शामिल किए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि पहले की सभी सरकारों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पहली सरकार है जिसने एंटी पेपर लीक कानून बनाने की पहल की है।
2: ये कोई लीक कोई इसी सरकार में हुआ, इसका एक इतिहास है। हर एक पार्टी के सरकार में हुआ और हर एक राज्य में कभी न कभी ये परिस्थिति बनी है। सरकार सेंसिटिव हो करके दोनों साइड, एक तो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की, इतना इंपॉर्टेंट कमिटी जो ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो और टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज हो, और दूसरा की हार्शेस्ट पनिशमेंट लोगों को, और पूरा देश, तरीका तो वही हो सकता है, इनके प्रवचन से तो ठीक हो जाएगा ऐसा है नहीं।
0: आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आज रोहतास जिले में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के राज्य भर में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। ईओयू के अधिकारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सासाराम के बेदा स्थित विभागीय कार्यालय और डेहरी ऑन सोन स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई।
3: यहां के अलावे अन्य ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है आर्थिक अपराध की।
0: आरोपी कार्यपालक अभियंता के पटना के दानापुर, बांका और मुजफ्फरपुर में कई ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने के दौरान 4 सोमवार पड़ेंगे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। सावन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, पटना जिले के बिहटा स्थित बिटेश्वरनाथ और फतुहा स्थित बैकटपुर धाम समेत विभिन्न शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हमारे कैमूर संवाददाता ने बताया कि मां मुंडेश्वरी मंदिर में चतुर्मुख महादेव के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और अन्य गणमान्य लोगों ने राज्यवासियों को पवित्र सावन मास की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि भगवान भोलेनाथ से कामना है कि हमारा समाज सद्भाव, सेवा और संस्कार के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। सावन माह की शुरुआत के साथ ही सुल्तानगंज के पवित्र गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है। एक रिपोर्ट।

0: के पहले दिन ही बाबा अजगैबीनाथ धाम में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अपनी पवित्र यात्रा की शुरुआत की। शिवरात्र के 3 बजे से ही नौमी पवित्र गंगे घाट, सीढ़ी घाट और जहाज घाट पर श्रद्धालुओं की कतारें लग गई। मेला प्रशासन के अनुसार विभिन्न गंगा घाटों पर आज 1 लाख से अधिक कांवरियों ने स्नान किया और जल भरा। जिला प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र और कांवर पथ पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रख रहा है। कांवरिया पथ पूरी तरह केसरिया रंग में रंग चुका है। चारों तरफ सिर्फ बोलबम, हर हर महादेव और बाबा नगरी चलो के गूंज जयकारे माहौल को पूरी तरह शिवमय बनाए जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
1: स्वास्थ्य विभाग ने सावन के महीने के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने शुभकामना देते हुए कहा कि श्रावणी मेला के दौरान किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत राज्य के 16 जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। मानसून की गतिविधियां बढ़ने के कारण पटना और आसपास के विभिन्न स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीवान समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भभुआ और पश्चिम चंपारण जिले में अनेक स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: दिनांक 31 जुलाई को राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भभुआ एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: नेपाल के सुनसरी जिले में तनाव की स्थिति को देखते हुए अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसबी, नेपाल सशस्त्र पुलिस और बिहार पुलिस ने सीमा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गश्ती अभियान चलाया। एसएसबी की 52वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट आलोक कुमार ने बताया कि सीमा क्षेत्र में सभी स्थानों पर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। कैंप कमांडर निरीक्षक प्रकाश चंद्र पांडे ने बताया कि पूरे क्षेत्र में गश्ती अभियान नियमित रूप से चलाया जा रहा है। इस समय चौकसी और बढ़ा दी गई है। इधर नेपाल प्रशासन ने बिना किसी वैध पहचान पत्र के भारतीय सीमा से नेपाल सीमा में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सारण जिले में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव कार्यक्रम के दौरान भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने किसानों को पशुओं की देखभाल के लिए टीकाकरण और बचाव के अन्य उपायों की जानकारी दी। वैभव सूर्यवंशी को आगामी दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ईस्ट जोन टीम का उप कप्तान चुना गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने इस उपलब्धि के लिए वैभव सूर्यवंशी को शुभकामनाएं दी हैं। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से दरभंगा समाहरणालय सभागार में हर घर तिरंगा विषय पर क्षेत्रीय मीडिया वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट राजेंद्र कुमार और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के डीआरडीए सभागार में आपदा प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। ताजा जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक लगभग 34% मतदान का अनुमान। राज्यसभा में आज पेश किया गया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक। विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर चर्चा जारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने की छापेमारी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुल्तानगंज में 1 लाख से अधिक कांवड़ियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में किया स्नान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar. ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
2: सावन का पवित्र माह आज से शुरू हो गया है। जिले के बराबर पहाड़ स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम में श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। मेले को लेकर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेला क्षेत्र में आकर्षक लाइट व्यवस्था, पंडाल, सीसीटीवी कैमरे, सूचना पट और साइनेज, पेयजल, अस्थायी शौचालय, बैरिकेटिंग और साफ सफाई की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य, विद्युत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर परिषद, पुलिस और आपदा प्रबंधन सहित संबंधित विभागों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रावणी पूजा और मेले को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने को लेकर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नगर भवन में संबंधित अधिकारियों, पुलिस निरीक्षकों और थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य सभी अधिकारी मौजूद रहे। जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी छिरिंग बाई भुटिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि राज्य स्तरीय रैंकिंग में जहानाबाद तीसरे स्थान पर है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को बधाई देते हुए आपसी समन्वय और गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ अभियान को गति देने का निर्देश दिया ताकि जिले को आगामी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिल सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए जहानाबाद में सेवा संकल्प समर्पण थीम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय आयोजन का सीधा प्रसारण किया गया। जिले में उपलब्धियों पर आधारित वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 100 लाभुकों के बीच योजनाओं का लाभ वितरित किया और प्रशस्ति पत्र दिए गए। घोसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। जिलाधिकारी छिरिंग बाई भोटिया ने कार्यक्रम की जानकारी दी।
3: माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने अपने प्रथम 100 दिनों में सुशासन, विकास एवं जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की है। इसी विकास यात्रा में जहानाबाद जिला भी तेज गति से आगे बढ़ते हुए विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

0: निर्माण के विस्तार हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5465 आयुष्मान कार्ड तथा 547 वही बंधन कार्ड जारी किए गए।
1: श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर संयुक्त श्रम भवन में ग्रामीण प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रत्येक पंचायत से एक एक श्रमिक ने भाग लिया। श्रमिकों को श्रम कानूनों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार और शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत स्वाभाविक मृत्यु पर आश्रितों को 50,000 रुपये और दुर्घटना में मृत्यु पर 2,00,000 रुपये की अनुदान राशि के प्रावधान की जानकारी दी गई।

0: विश्व हेपेटाइटिस दिवस अवसर पर जिले में एएनएम आशा कार्यकर्ताओं एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इसमें हेपेटाइटिस के कारण लक्षण बचाव और उपचार की जानकारी दी गई। सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षित रक्त और इंजेक्शन का इस्तेमाल तथा हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण बीमारी से बचाव के प्रभावी उपाय बताए गए। साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट की रोकथाम को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने राज्य स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक में आम लोगों को ऐसे फर्जी कॉल से सतर्क रहने की अपील की गई, जिसमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए डराते हैं। लोगों से ऐसे मामलों में पैसे ट्रांसफर नहीं करने और तत्काल इसकी सूचना देने को कहा गया। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लंबित और अस्वीकृत ऋण आवेदनों की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पीयूष की अध्यक्षता में बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक में पात्र लाभार्थियों के आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। तकनीकी या दस्तावेजी कमी के कारण अस्वीकृत आवेदनों को त्रुटि सुधार का अवसर देने और पात्र आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा गया।
1: अभी आप सुन रहे थे जहानाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म हद कर दी आपने से, बोल हद कर दी आपने, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर, गीत रचना आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन आनंद राज आनंद का।

पार्टियों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएम के सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएम के सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएम के सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएम के सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहाँ शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों की एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाई। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं।

और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आएं और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं, किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है, उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है।

0: त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं न कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए, अन्यथा यही जेंजी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार।

मैथिली साहित्यिक आ सांस्कृतिक कार्यक्रम सिंगरहार सुननिहार समस्त साहित्य प्रेमी श्रोता बंधुके सोनुक नमस्कार। स्वागत अछि अपने सब गोटे के आजुक नव अंक में। बंधु लोकनि, हमरा सब बेसी काल सुनैत रहित छी अथवा बजितो छी, लोक ई कहलक, लोक ओ कहलक, लोक एना कहत, लोक ओना कहत, कि लोक एना करैए, लोक ओना करैए। तखन से हमरा सब सोचै छी, ई लोक मने की भेल, लोक ककरा कहबे, आ कखनो कऽ तऽ हमसब इहो बजैत छी ने, एहि लोकसँ लऽ कऽ ओहि लोक धरि, तखन लोक मने की भेल। आब पहिने

0: तो ई फिर छाली जे लोक शब्दक प्रयोग दू अर्थ में होइत अछि। पहिल लोक मने होइत अछि जन सामान्य आ दोसर लोक मने होइत अछि संसार आकि कही जगत, जेना कि हमरा लोकनि कहैत छियै इहलोक परलोक से जैसे, मुदा एखन हमरा लोकनि परलोक पर गप नहि करब। एहिठाम जाहि लोक पर गप करब ओ जन सामान्य अछि। जन सामान्य सँ सम्बन्धित साहित्य पर सेहो गप करब जकरा हमरा सब लोक साहित्य कहैत छी। जन सामान्यक अर्थ में लोक शब्दक प्रयोग सर्वप्रथम वेद व्यास महाभारतक आदि पर्व में केने छला। अज्ञान तिमिरांधस्य लोकस्य तु विचेष्टमः आ प्रत्यक्ष दर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवे नरः। हाँ, हम गप कऽ रहल छलहुँ लोक साहित्य पर। कहल गेल अछि जे कोनो युग में शिष्ट आ परिनिष्ठित साहित्य सँ भिन्न जे रचना होइत अछि तकरा ओहि युगक लोक साहित्य कहल जाइत अछि। ठीक तकर विपरीत इहो ध्यान राखक चाही जे साहित्यक विकासक प्रक्रिया में अपन प्रामाणिक महत्व सिद्ध करबाक पश्चात आजुक लोक साहित्य काल्हिक शिष्ट साहित्य भऽ जाइत अछि। असल में लोक साहित्यक सर्वमान्य परिभाषा एखन धरि नहि देल जा सकल अछि। एहि विषय में विद्वान लोकनिक मत अलग अलग छन्हि। सब अपन अपन मतक अनुसार एकर परिभाषा सेहो देने छथि। कतेक गोटे कहब छन्हि जे शास्त्र ओ पद्धति सँ विहीन एवं नगर सँ बहिर्भूत ग्राम्य साहित्य मात्र लोक साहित्य अछि, किंतु कतेक विद्वान एहि बात सँ सहमत नहि छथि। हिनका सभक कहब छन्हि जे नगर आकि गाम में प्रसारित समस्त जनसमूह जकर व्यवहारिक ज्ञानक आधार कोनो शास्त्र नहीं अछि सह लोक साहित्यक निकट सेहो लगैत अछि। आधुनिक भारतीय साहित्य में लोक साहित्य अंग्रेजी भाषाक फोक लिटरेचरक अनुवाद अछि। मैथिली साहित्यक तो उद्गमे भेल अछि लोक साहित्य सँ। अज्ञात अपरिचित लोक साहित्यकार द्वारा आइ जे हमरा लोकनि लोक साहित्य पर गप कऽ रहल छी आकि कोनो साहित्य पर गप करैत छी से निश्चित रूपे देन थिक हमर साहित्य साधकक। आओ पहिने हमरा लोकनि सुनिली साहित्य साधक, तकर बाद आर गपसप करब।
1: साहित्य साधक नमस्कार। आई एहि श्रृंखला में कथा उपन्यास साम्राज्ञी लिली रे। लिली रे मैथिली कथा उपन्यास के एकटा नव फलक देनिहारी लेखिका थिके। कथा वस्तु पात्र केर चरित्र चित्रण ओकर मनोदशा लेखन केर शैली आदि विविध क्षेत्र में ई अपन एकटा नव बाट बनौलनि। लिली रे ओहि समय केर कथा लेखिका थिकी जहिया कन्या के पढ़ायब सेहो उचित नहीं मानल जाय छल। आई तो मैथिली में अनेक लेखिका लेखन क्षेत्र में सक्रिय छथि। कविता कथा उपन्यास निबंध आदि प्रायः समस्त विधा में लेखिका लोकनि अपन अवदान दऽ रहल छथि। आब तो स्वतंत्र रूप सँ कवयित्री सम्मेलन आकि लेखिका सम्मेलन सेहो भऽ रहल अछि से सफल आयोजन। संख्योक दृष्टि सँ आ गुणवत्तो केर दृष्टि सँ।

मुदा एकटा समय एहनो छल जखन मैथिली मंच कवयित्री लेल लालायित रहित छल। मंचे किए पत्र पत्रिको में लेखिकाक दर्शन यदे कदा होइत छल। स्थिति ई छल जे पुरुखे लोकनि महिलाक छद्म नाम सँ किंवा महिला सँ संबंधित अनाम लेखन करैत छलाह। एकरा जड़ में छल स्त्री समाज पर बहुत रास बन्हेज। ओ घर सँ बहराइयो नहीं सकैत छलीह, पढ़बो लिखबो लेल नहि। धी बेटी केर घर सँ बहरायब आकि पढ़ब लिखब अधलाह मानल जाइत छल। एहन विषम परिस्थिति में लेखिका के ताकब कोनो जनी जाति के लेखन लेल प्रेरित प्रोत्साहित करब दुष्करे नहि असंभव सन छल। एहन विपरीत परिस्थिति केर पाथर आ ढेंग केर तर दाबल पीचल जाइतो अनेक प्रतिभा अंकुरित भेल, अंकुरबे नहि कैल। ओ एकटा झमटगर आ विशाल वृक्ष केर स्वरूप सेहो लेलक। मैथिली कथा उपन्यास साहित्य क्षेत्र में एहने नाम थेक लिली रे केर जे विपरीत परिस्थितियों में घर सँ बाहर भऽ कऽ पढ़बा केर अवसर नहि प्राप्त होइतो स्वाध्यायक बल पर निमात्र ज्ञानार्जन कयलनि अपितु लेखन केर क्षेत्र में सेहो डेग दिलानि। डेगे नहि दिलानि, एहि बाट पर ततेक आगा बढ़लीह जे ओ मैथिली साहित्य क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कयलनि। लिली लेकर मैथिली साहित्य केर क्षेत्र में आगमन मात्र एतबे लेल महत्वपूर्ण नहि अछि जे तहिया महिला लेखन नहि होइत छल आ लिली रे एहि क्षेत्र में पदार्पण कयलनि। ओ जाहि कथा आ उपन्यास केर संग मैथिली केर क्षेत्र में अपन कीर्तिमान स्थापित कयलनि ताहि लेल महत्वपूर्ण थिकी। हिनक अवदान एहि सँ आंकल जा सकैत अछि जे हिनका अपन उपन्यास मरीचिका लेल 1982 में साहित्य अकादमीक पुरस्कार सँ सम्मानित कयल गेलनि। लिली रे केर जन्म भेलनि 26 जनवरी 1933 के। कटिहार जिलाक दुर्गागंज हिनकर सासुर रहलनि आ पूर्णिया जिला के रामनगर नैहर। स्कूली शिक्षा तो नहिए प्राप्त कयलनि मुदा घरे पर पढ़ैत स्वाध्यायक बल पर मैथिली, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषा पर समान रूप सँ अधिकार प्राप्त कयलनि। लिली रे मैथिली साहित्य क्षेत्र में छद्मनाम सँ प्रवेश कयलनि। कल्पना शरण केर नाम सँ हिनक कथा सभ प्रकाशित भेल। वैदेही में हिनकर 5 गोट कथा छपल जे लिली रे केर नाम सँ नहि अपितु कल्पना शरण केर नाम सँ प्रकाशित भेल अछि। 1955 में रोगिणी आ ठकपनी, 1956 में की कहू आ 1957 में रंगीन पर्दा आ हमर गप ई कथा कल्पना शरण केर नाम सँ प्रकाशित भेलनि। मैथिली में कथा सभक नीक चर्चा होबय लागल, हिनकर परिचय ताकल जाय लागल। रंगीन पर्दा कथा तो मैथिली कथा साहित्य क्षेत्र में एकटा क्रांति आनि देलक। जखन 1978 में 22 जनवरी के मिथिला मिहिर में हिनकर दीर्घ कथा अंतराल प्रकाशित होयब आरंभ भेल तखन कल्पना शरण के नाम सँ पर्दा उठल। अंतराल 4 अंक में जाकर संपन्न भेल। एहि अंक में हिनकर चित्र आ संक्षिप्त जीवन परिचय पहिले पहिल प्रकाशित भेल। एकर बाद हिनकर लिली रे नाम चर्चित होबय लागल आ ई चर्चाक क्रम निरंतर आगा बढ़ैत रहल। हिनकर प्रकाशित कृति छनि उपन्यास मरीचिका जे 2 भाग में प्रकाशित भेल। एकरा अतिरिक्त उपन्यास उपसंहार, जिजीविषा, पटाक्षेप आ एकटा बड्ड पुरान गप। कथा केर पोथी छनि रंगीन पर्दा, लाली गुरास, विशाखन, नीक लोक आ लिली रेक प्रतिनिधि कथा। लिली रे आत्मकथा सेहो लिखलनि जकर नाम थिक समय के धंगैत। रोगिणी, नीक

लोक विशाखन जिद विधिक विधान बाइस्कोप अबूझ बिहारी अयबासों पहिने रानु देवी राणा अंतह सलीला संबंध माया चक्र गुलाबजान दुर्वचन हम राजी छी आदि कथा लेखन कर विशिष्टता के संग उपस्थित भेल आ मैथिली कथा के क्षेत्र में अपन स्थान सुरक्षित कैलक। उपन्यासों क्षेत्र में ई नव

0: स्पष्टता के संग उपस्थित भेल आ मैथिली कथा के क्षेत्र में अपन स्थान सुरक्षित कैलक। उपन्यासों क्षेत्र में इ नव नव विषय के चयन करैत रहली। नक्सलवाद पर प्रायः पहिल रचनाकार भेलीह जे उपन्यास लिखलनि। लिली रेकर कथा उपन्यास में नारी पात्र विशेष रूप सँ अपन परिचिति के स्थापित कैलक अछि। से अपन स्वभाव विचार विमर्श आ अपन गतिविधि के लऽ कऽ सेहो 89 वर्ष के अवस्था के बिता कऽ 3 फरवरी 2022 के लिली रे परलोक गमन कैलनि। मुदा आइयो अपन रचना में ओ हमरा लोकनि के बीच उपस्थित छथि आ सर्वदा उपस्थित रहती है। एकरा संग ही संपन्न होइत अछि साहित्य साधक श्रृंखला के आजुक ई कड़ी। आलेख एवं वाचन अमलेंदु शेखर पाठक केर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद। साहित्य साधक।
1: एखन हमरा सब सुन रहल छलहुं है साहित्य साधक आलेख आ वाचन छलन है अमलेंदु शेखर पाठक के। अलिखित रूपे रचित रचना सँ एक युग सँ दोसर युग सँ तेसर युग धरि मौखिक रूपे प्रसारित होइत रहल अछि। आ मौखिक रूपे प्रसारित होयबाक कारणे ओकर भाषा भनहि बदलैत गेलैक। ओकरा में विषय वस्तु सेहो जोड़ल घटाओल गेल हेतैक, किंतु ओकर मौलिकता ओहिना ओहिना बचले रहल अछि। लोक साहित्यक विभिन्न प्रभेद सेहो अछि, जेना लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनाट्य, बुझौल, वचन आदि। लोक साहित्य में जे सबसे पहिने प्रचलित विधा अछि ओ अछि लोकगीत। असल में लोकगीत के अपन कंठ में जोगा कर रखलनि मिथिला स्त्री लोकनि। मिथिला में सब अवसर पर गाओल जाइत रहल अछि मैथिली गीत, जै कि लोकगीतक माध्यम सँ मानव हृदयक राग विराग, प्रेम उत्साह, समर्पण, वेदना आदि के सहजताक संग प्रकट कयल जाइत अछि। तैं ई सर्वाधिक लोकप्रिय रहल अछि। लोकगीत में भाषाक सरलता सेहो रहित अछि, एकरा में अविच्छिन्न प्रवाह रहित अछि, एकदम कलकल छल छल बहित सरिता जका। लोकगीत में भावक उदारता रहित अछि, परिवार आ समाज में शांति अभ्युदयक कामना सेहो व्यक्त कयल जाइत अछि लोकगीतक माध्यम सँ। तैं लोकगीत जन सामान्यक कंठ में उतरैत रहल अछि, सुनबा में मधुर सेहो होइत अछि। एहि गीत सब में धर्मोन्मुख जीवनक कामना, आत्मसमर्पण आ वैराग्यक भाव सेहो निहित रहैत अछि। तैं कुल मिलाकऽ कहि सकैत छी जे लोक साहित्य जीवनक सार्थिक
2: गप तँ हेबे करतैक, किएक ने पहिने एकटा काव्य पाठक आनंद लऽ लेल जाय।

छाया छूटत कुमति के पथ धायने बढ़बै तो कुमति के पथ धायने।

सब यह कहते आबो समरू, सब यह कहते किछुओ तो धर्म कर्म करियो, किछुओ तो धर्म कर्म।

गीतक संगहि आजुक सिंगारहारक समय सेहो एतहि सम्पन्न होइत अछि। तऽ सोनू के चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंहहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481, मोबाइल नंबर है 9430029353।
7: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा, समाचार संध्या। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार

0: नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
4: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
5: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में

0: लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
2: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत

0: और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ISS ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। ISS अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat.

तेरे मेरे सपने खिले, यारों के दिल मिले। श्रोताओं, जब सपने पूरे होते हैं तो दिल खिल ही जाते हैं। आइए फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तलाश फिल्म का ये गीत यार बदल ना जाना। बोल है, स्वर दिया है उदित नारायण और अलका याज्ञिक ने, संगीत निर्देशन संजीव दर्शन का और गीत रचना समीर के। तो आइए सुनते हैं तलाश फिल्म का ये गीत।

यार बदल ना जाना मौसम की तरह। हाँ दोस्तों, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। लेकिन प्यार होने के बाद प्रियतम या प्रियतमा दोनों में से किस कोई भी अगर अपने वादे पर खड़े नहीं उतरते हैं और बदल जाते हैं तो बहुत ही हृदय विदारक दर्द होता है। और इसीलिए इस गीत में प्रेमिका ने पहले ही से चेता दिया है अपने प्रियतम को कि यार बाद में बदल नहीं जाना। तो आइए फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बोल हैं तेरी आँखियों में, बुलंदी फिल्म के ये गीत हैं। स्वर दिया है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति ने, संगीतकार हैं बिजू शाह और गीत रचना आनंद बख्शी के।

ना मुझको छेड़ो, ऐसे ना मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के हैं राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से ना मिला जो दिल होगा मिलना हमारा मुश्किल होगा मिलना हमारा मुश्किल होगा मिलना।

अफसर के हम इस फिल्म का गीत पूरा आपको नहीं सुना पा रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में प्रसारित होंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए ये फिल्म संगीत।

0: This is the Delhi station of Akashvani. Please stand by for our next broadcast. You will now listen to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today.
1: Now question hour, question number 121, Sriman Constantine Ravindranji.
2: Question number 21.
3: प्रश्न संख्या 121. क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है ख जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ग ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है और घ परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
4: माननीय सभापति महोदय उत्तर सदन के पटल पर रखा
1: है फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान Constantine Ravindranji.
2: Thank you, sir. Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation?

0: हमारे विकास की प्राथमिकताओं में है। बायोडायवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है। और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। और ये निश्चित रूप से देश की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है। इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी।
2: धन्यवाद सभापति महोदय। बायोडायवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडायवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडायवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है।
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है। वो बायोडायवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रहीम जी।
3: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है? ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री त्रुपी विल्सन जी।
4: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers, and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
3: Dr. Mansukh Mandavia, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
5: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चंस पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है, और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है,
6: भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है। हमारे यहाँ वो एक

0: इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
2: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ द न्यू 50% बेसिक वेज रूल अंडर द कोड ऑन वेजेस विल इम्पैक्ट वर्कर्स एलिजिबिलिटी अंडर द 21,000 ESIC सीलिंग, एंड व्हाट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 2020 में बना था लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
3: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा

0: और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको कि कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर को उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए, ताकि जिसको जॉब चाहिए वो जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई, तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है।
3: नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, श्रीमान संतोष कुमार पी।
4: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग, क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत

0: न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है। और घ, देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
2: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे, वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, तीन क्लासिफिकेशंस दी है, ए बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पूर्ता खाना मिले, और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के, उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें, वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में एक फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का एबीसी यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गाँव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा, और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
4: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 ईयर वंस और 3 ईयर वंस और 2 ईयर वंस रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार वीडीआर के द्वारा, वीडीएस के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है, तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो

0: नहीं और उसका लाभ अपने देश के अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
2: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे है। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह

0: रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास से बिलोंग्स करते हैं, जो ऑन स्किल लेबर और स्किल लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने की कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंट्रेक्चुअल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने
1: सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपना सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ, भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
2: नाउ क्वेश्चन नंबर 124, श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
3: 124 प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
2: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: रक्षा निखिल खड़ से, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
4: टल पे रखा है।
2: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
5: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं, और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है, और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है।
6: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे

0: वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था। पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी अग्रसर भूमिका रखी और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है और जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
2: शुक्रिया चेयरमैन सर। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजिस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का जहाँ उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
3: ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, 2 दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है। सरकार की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माई भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग सनडाउन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इनविटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इनविटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो ताकि

0: देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े, इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
2: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं। 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है और जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस, जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
4: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीज़ें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या है उसके लिए। हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125 डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
5: प्रश्न संख्या 125। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर

0: कि कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुनिश्चित कर रही है, और ग मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
2: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
3: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते है सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना एंड एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारा है। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने था, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है वुमेन एम्प्लॉय के साथ, इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ा लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसका आंकड़ा किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है। नया सब्सक्राइबर पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.69, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए खुशी होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में

0: स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेनर्स बनाए हैं। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया, अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेनर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया। वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं एंड किसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेनर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के, वो ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे है सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नाइट ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना ऐसा भी प्रोविजन हम रखे है सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रहे हैं। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, यह मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.2 करोड़ लोग

0: जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पाटीदार जी।
2: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है। पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
4: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
5: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: थैंक यू सर। Honorable Minister, while reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance provided. So my pinpoint question to you, has the government undertaken any independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction, or quality of representation provided to the beneficiaries?
1: Honorable Minister.
5: धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चा हुआ, कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि हर जगह CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी।
6: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज है, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का वो अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में

0: रहा है, ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषणी टूल, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे विरासत को भी बचाएंगे। धन्यवाद।
1: The House stands adjourned to meet at 2 PM।
2: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today। This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों बाद हम आपको फिर से लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में। तब तक के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की

0: सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।